0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

सुबह जब हो जाती है एक खुशबू सी फैल जाती है, परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरे गीतों से जग को फिर जगाते हैं, हर तरफ से एक ही सदा आती है और हमको ये समझाती है कोई है जो आवाज

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हेलो, गेस व्हाट? हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
3: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
4: Like us on facebook.com/FM247365.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Likhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
6: कूल किंग।
7: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
8: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
9: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग।
9: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
10: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
12: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे. अपने शो का आगाज करना तो मैं हमेशा आगाज जो करती हूँ कुरान शरीफ का तर्जुमे के साथ. होपफुली आपने भी नमाज पढ़ ली होगी और सुबह का वक्त जो है वो बेस्ट वक्त है, बेहतरीन टाइम होता है कि आप भी कुरान शरीफ की तिलावत करें और कुरान शरीफ जब भी पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें. हम पढ़ रहे हैं आजकल सूरह लैल का तर्जुमा और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 6 से. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. और सबसे अच्छी राह को सच्चा माना तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहैया कर देंगे और रहा वो जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना और सबसे अच्छी राह को झुटलाया तो बहुत जल्द हम उसे दुश्वारी मुहैया कर देंगे और जब वो हलाकत में पड़ेगा तो उसका माल उसके काम ना आएगा. बेशक हिदायत फरमाना हमारे ही जिम्मे है और बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं. सूरह लैल का तर्जुमा आपने सुना और जब आप कुरान शरीफ समझ के पढ़ते हैं तो आप खुद आपको पता चलता है कि आप कितनी सारी चीजें आपको पता चलती हैं. जैसे कि बुखल का जिक्र है, अल्लाह ताला को बुखल और बुखल करने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद. कंजूस लोग अल्लाह ताला को नहीं पसंद, खासतौर पे वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और उनको जितना भी माल हो वो हमेशा शिकवा ही करते रहते हैं. और इसी हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए. और ऐसा नहीं होता कि हम गलत लोगों से दोस्ती नहीं कर लेते. हम जिंदगी में हमें बहुत धोखे भी मिलते हैं और नुकसान भी हम इससे उठाते हैं क्योंकि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं. तो यही आज का हमारा टॉपिक है. आप लोग मुझे मैसेज करें आजय समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आजय समीहा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. और हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ इट्स 8:15 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड श्वाबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 75 रिमार्केबल ईयर्स. HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें.
3: कूल किंग. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
5: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL. आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
9: एंड
10: डेटॉल फूड से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
9: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
2: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
9: एंड
11: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले
9: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए एंड
10: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
9: एंड
10: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
9: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
13: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
14: FM 247 365. This is

0: आए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: कूल किंग।
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
6: कूल किंग।
8: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
9: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
10: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए। ए
11: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
12: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
13: इंट्रो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
10: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
14: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
15: ये क्या भाई?
14: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
15: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
14: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
16: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
17: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
18: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
19: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC. And
15: Dettol Facial. Ye baddu phalane wale germs ko dur bhagaye.
10: And HBL Freedom Account. Jahan khab वहाँ HBL।
9: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
12: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
20: And
21: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
20: And
21: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
20: And
22: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
23: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
24: Good morning, Pakistan, on FM 100.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीह। आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि कैसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और ऑफिस में लोगों को लगता है कि जो ऑफिस में उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनके दोस्त हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सब आपके दुश्मन हो, दोस्त होते हैं लेकिन बहुत कम। और दोस्ती आप ऐसे किसी को दोस्त नहीं कह सकते जब तक आप उसको आजमा ना लें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो बिला वजह आपसे जलते हैं, जेलस हो जाते हैं, और जितने आपके साथ स्वीट बन रहे होते हैं पीछे से आपके जो है मतलब वार। और ऑफिस एक बहुत बड़ी ऑफिस हो या कहीं भी जब जहां पे चार पांच या ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं वहां पे पॉलिटिक्स तो होती ही है, लाजमी है। जहां पे पावर डायनामिक्स होते हैं, हायरार्कीज होती हैं कि ऊपर नीचे सबऑर्डिनेट्स, और आपको पता होता है किसके पास क्या पावर है। और तो इस पावर गेम, और जो लोग इस गेम को समझते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं और वही कामयाब हो जाते हैं। और जिनको ये गेम नहीं आता, जो बिल्कुल इमोशनल होके देख रहे होते हैं चीजों को, हाय ओ उसने मुझे ये क्यों कह दिया, बॉस ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, बॉस ने मुझसे ऐसे क्यों बात की, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि बॉस कभी भी आपके दोस्त नहीं होते। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉस को अपना दोस्त समझना ये बहुत बड़ी गलती होती है। कहीं कहीं जैसे कि आई वॉज इन मीडिया माई बॉस लाइक स्टिल माई फ्रेंड, मगर ऐसा बहुत कम होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लोग इवन वो आप चाह कर भी वो एक आपसे फासला रखते हैं, क्योंकि वहां पर एक और गेम हो रहा होता है, हर कोई एक गेम में इन्वॉल्व है। इसलिए हर कदम यू हैव टू बी सोशली इंटेलिजेंट टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बाकी अगर आप बस मलंग इंसान हैं तो फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है हम अक्सर धोखे कारोबार में अपने ऑफिस ऑफिस की जिंदगी में खाते हैं। तो इसलिए ख्याल रखिए कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। खैर, और आप बताएं, आप अपना तजुर्बा हमसे शेयर करें कि कैसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के पैगामात का। और तो अच्छा, आरजे मोहम्मद अली अंसारी कह रहे हैं कि आरजे एक सवाल आपके लिए, अगर आपका एक ऐसा दोस्त हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो तो वह अचानक से आपकी लाइफ से चला जाए बिना कुछ कहे, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक दो मैसेजेस छोड़ सकते हैं कि यार तुम किधर चले गए मुझे छोड़ के। लेकिन जिसको जाना है उसको जाना है, वो किसी वजह से गया होता है, और कुछ लोगों को लाख बुला लो वो वापस नहीं आता। लेकिन पता है ऐसे जाना नहीं चाहिए बंदे को कंफ्यूज करके छोड़ के। अच्छा, मैं खुद ऐसे ही हूं, अगर मुझे किसी की बात बुरी लगेगी तो मैं खामोश हो जाऊंगी और मैं उसको बताऊंगी हरगिज नहीं कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात बुरी लग गई और मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। मैं बस गायब हो जाती हूँ या मैं खामोश हो जाती हूँ, और बेचारा बंदा सोचता ही रह जाता है कि यार ऐसा मुझसे क्या हो गया था, ऐसा मुझसे क्या हो गया था, क्यों चला गया। लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। आई डोंट नो इफ यू टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, बट गर्ल्स आर लाइक दैट, यू नो, दे नेवर एक्सप्लेन। उनको बुरी लगी बात बस वो बताएंगी, बिल्कुल नहीं बताएंगी, टॉर्चर। वो बेचारा बंदा पागल हो जाए, यार मैंने क्या किया था, वो तो नहीं बात थी, ये बात तो नहीं थी। खैर, ये हमारा स्टाइल है, लेकिन बाद में डांट ही बहुत पड़ती है कि बता तो देते। तो हाँ, ये इश्यू है। और तो फिर आप बस वक्त पे छोड़ दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए और इंशाल्लाह चीजें बेटर हो जाएंगी। राइट, तो बात हो रही है दोस्ती की, और इसी बात पे सुनते हैं दोस्तों ये ट्रैक।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
2: हेलो गेस व्हाट हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर्ड सीट अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: कूल किंग। अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
0: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: This program is brought to you by
9: AGS Tubular दिखाए काम। AGS Tubular Battery दिल को है आराम।
5: And Cool King Hair Oil जैसे चलता फिरता एसी।
7: And Dettol Cleanser ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
2: And हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
0: And
10: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
0: And दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जस कैश।
0: And
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: And
11: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
12: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے

0: 100 traffic update.
1: मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल को जिस तरह है, असम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो तमाम ट्रैफिक जो हबीब बैंक चौरंगी से वो ट्रैफिक जो हबीब बैंक चौरंगी से जा रहा है इस वक्त गुलबाई और गोलेमार की जानिब, और वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त हबीब बैंक चौरंगी से माड़ीपुर रोड की जानिब जा रहा है उस पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। गाड़ियां बम्पर टू बम्पर मूव कर रही हैं, लिहाजा वो तमाम लोग जो इस रास्ते पे सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पे पहुंच सके। मजीद अपडेट कहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा और आप लोगों के पैगाम हमारे पास पास है, लेकिन हमारे पास एचपीएल की जाने से भी एक पैगाम है। एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ पाए मुफ्त आईबीएफटी, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी एचपीएल ब्रांच, तो आपको मिलेंगे यहां से बहुत सारे फायदे, क्योंकि जहां ख्वाब वहां एचबीएल। और अब हम चलेंगे आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। हमारे पास बुरहान का मैसेज आया था कि गोरा रंग धोके बाल से बदल जाता है, काला असली कभी बदलता नहीं, नकली चीजें यूज करते अपना रंग चिट्टा करने के लिए, जो अल्लाह पाक ने बनाया वो असल है। वैसे ये बात तो सही है कि अल्लाह पाक ने आपका रंग जैसा ही बनाया, लेकिन अक्सर गोरे रंग वाले और खासतौर पर लड़के, क्योंकि वो अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाते, धूप में घूम घूम के वो रंग अपने काले कर लेते, तो प्लीज अगर आप धूप में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं तो कुछ अपने मुंह पे लगा लें सनस्क्रीन। या वो आपने कभी खवातीन को देखा है? अच्छा, मुझे ऐसी खवातीन बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने रंग रूप का बहुत ख्याल रखती हैं, गाड़ी भी चला रही होती है तो ग्लव्स पहन के। कभी आपने लड़कों को ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाते हुए देखा है? और लाइक यू नो, अगर सोचा लड़के ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाए कि यार मेरे हाथ बहुत काले हो गए, तो सारे लड़के ही उनको मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या पागल तो नहीं हो गए, हाथ अपने बचा रहे। खैर हाथ तो छोड़ दे, लड़के तो मुंह नहीं बचाते, रंग एकदम काले हो गए। मैं आपको बता रही हूं कि काले, अगर आप पैदाइशी ही बहुत ज्यादा काले हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और उसको क्या बचाना। लेकिन खैर अपनी स्किन का ख्याल रखें, सनस्क्रीन जैसे कि हेलमेट की जरूरत खवातीन को भी होती है, ऐसे मर्दों को नहीं होती। तो जो भी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, भले आगे या पीछे, उनको हेलमेट पहनना लाजमी है। इसी तरह से जो धूप से जो स्किन को बचाना होता है, मर्दों की स्किन जो है वो सन प्रूफ नहीं होती, तो फिर ऑलरेडी बिल्ट इन एसपीएफ 60 है उसके अंदर, उनको सनस्क्रीन लगानी चाहिए और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वरना बीवियां कहती हैं हाय शादी तो अच्छे खासे भले इंसान से की थी, अब देखो गंजा तो हो ही रहा है, साथ में काला भी हो गया है। एंड आई एम टेलिंग यू, काला और गंजा एंड मोटा साथ साथ, इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिल्कुल भी नहीं। क्या बताएगी बीवी आपकी है कि आप साथ साथ गंजे के साथ साथ काले भी हैं। अब देखिए गंजपन भी रोकना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, लोग गिव अप भी कर देते हैं, बाल तो गिरेंगे ऐसे भी कराची है, लेकिन अगर काले भी हो रहे हैं साथ साथ, आए हाय बेचारी बीवियां, तो कुछ ख्याल कर लें अपनी स्किन का, ठीक है जी। और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें धूप से, ऐसी धूप है कि आए हाय हाय हाय। और अशफाक और मिसेज अशफाक का भी मैसेज आ गया जो हम शामिल करेंगे, और आप लोग भी हमें मैसेज करें। और आज का हमारा टॉपिक यह है कि कैसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और आप तभी कहें मुमकिन हो तो प्ले करें, आपके अब बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। क्यों भाई, मतलब क्यों हम बिछड़ रहे हैं और क्यों हमें ख्वाबों में मिलना है? ख्वाबों में मिल के ये बंदा चीख मार के उड़िया क्या है, हाय को ये ख्वाबों में भी आ गया मेरे, ओके। और कितना मुश्किल है ना परदेश जाके काम करना, हम तो कभी नहीं करते समझिए, इतना छोटा दिल हमारा, फैमिली से दूर कैसे, पता नहीं कैसे कैसे, मतलब परदेश का ताल्लुक ख्वाबों में क्यों मिले यार। आबिद अमीर प्लीज, सुबह सुबह ते दुखी आप गाने ना लगाएं। अच्छा, इसके अलावा इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आ गया। इकबाल हुसैन साहब, बड़ी देर की मेहरबा आते आते, किधर थे आप? और खैर हम बस यही बातें कह रहे हैं कि आप किस किस्म के दोस्तों को बिल्कुल अवॉइड करें, दूर रहें उनसे। और जाहिर है बंदा पहले आजमाता है फिर पछताता है, तो हमें हम बताएं अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एशाए स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर, या मुझे मेरे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे @RJSamiha मैसेज करें। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। और अभी हमारा क्लासिक टाइम होता है 9 से 9:15, और देखें और हम ये गाना प्ले कर रहे हैं क्लासिक सॉन्ग में, और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं नसरीन पटेल जी को। और आप तो मेरा भी सुन लें क्लासिक सॉन्ग, ये होते हैं क्लासिक सॉन्ग, आइए सुनते हैं।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समिया और आप लोगों के पैगाम हमारे पास आ रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं आप कैसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और तो फिर आमिर अमीर का मैसेज भी आया हुआ है और इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आया हुआ है। रिजवान रिजवी का भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अच्छा पूरा सलाम ही है अच्छा, इतना लंबा सलाम चलिए जी। और इसके अलावा आमिर अमीर कह रहे हैं कि दोस्ती वाले पे मौजू कहूंगा कि जो लोग अपने आपके मिजाज के ना हो, खास तौर पर जिन लोगों से मिलने का दिल ना चाहे उनसे तो दोस्ती कभी ना करें। दोस्त से मिलने की तो हसरत रहती है अभी बिछड़े हों। और अब उम्मीद करें भाई आप इतना डीमोटिवेट ना करें काले रंग वालों को, क्यों आपने वो आप उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं काले रंग वालों के और जिनके सर पे बाल नहीं है। हाँ क्यों क्यों भला क्यों मतलब वजह भला। और वाह भाई वाह देखें काले रंग और गंजे लोग कितने खुश मिजाज और नरम गोशी से पेश आते हैं। देखें आपको ही मिले होंगे ऐसे लोग जो खास तौर पर काले भी हों और गंजे भी हों और खुश मिजाज हों। मैंने ऐसा कॉम्बो अभी तक तो नहीं देखा। अच्छा और दिखावे एक सेकंड क्या कहना दिखावे से अगर किसी को अच्छा इंसान मिल गया तो आप क्यों उलझा रही है मैडम। देखिए ऐसी बात नहीं है, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना तो फिर वो गंजा भी हो काला भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज है प्यार। लेकिन कभी कभी बहुत खूबसूरत चेहरे होते हैं आपको उनसे प्यार नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल अजीब से मिजाज के होते हैं। मिजाज एक अलग चीज है, मिजाज में हम नहीं जा रहे मगर हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो मतलब अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे अपनी स्किन का अपनी खूबसूरती का तो मतलब आपकी फैमिली खुश होगी यार कि चलो हमारा हमारी फैमिली के अंदर एक अच्छा जाज़िब नजर इंसान है। चलो अपने को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। और अपना ख्याल रखना चाहिए अपने उठने बैठने का, उड़ने का, कपड़ों का और अपनी स्किन का खास तौर पे। और हाँ जाहिर है मिजाज ऑफकोर्स अगर आप बद मिजाज हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं मगर वो अपने आप के अंदर ऐसे दोस्तों से भी नहीं दोस्ती करनी चाहिए जो खुद गर्ज हो, जो हर वक्त शीशा बहुत देखते रहे, वो अपने अंदर ही रहते हैं कि जी भाई नहीं भाई मैं तो यू नो इट्स नॉट गुड फॉर मी और मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं आजकल तो वो जो बड़े चिड़ गए सॉरी लड़के इतने अजीब लगते हैं ना ऐसी बात करते हुए सॉरी नो कार्ब्स और नो शुगर फॉर मी। हाँ सही है ठीक है डाइट कॉन्शियस होना चाहिए, शुगर मैं भी नहीं जा वो रही होती, आई ऑल्सो डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन अब किसी दावत में चले गए वहां मीठा रखा हुआ है तो फिर मतलब वो बंदा बोले नहीं चाहिए आज के मैं डाइट में रख के चमाट मारने का दिल चाहता है ऐसे लोगों को जो किसी के घर मेहमान जाते हैं और वो मेहमान बेचारा मेजबान उनके लिए बिछा जा रहा है खाने लगा रहा है वो कह रहे सॉरी मैं तो ये नहीं खाऊंगा वो तो नहीं और एक दिन की डाइटिंग कर लेगा एक दिन डाइटिंग छोड़ देगा तो कोई पागल नहीं हो जाएगा। किसी का दिल तोड़ने से बेहतर है कि आप अपनी डाइटिंग छोड़ दें। तो ये जरा थोड़े से तरीके मैनर्स होने चाहिए। और सही कह रहे हैं कि भाई खूबसूरती से ज्यादा मिजाज बेहतरीन है आपके। अगर जाहिर है जो खुश मिजाज लोग होते हैं उनके हर जगह दोस्त बन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं और जो सड़े लोग होते हैं उनके अपने रिश्तेदार ही उनको डिसोन कर देते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार हर वक्त ही सख्त मिजाज ही सख्त मिजाज ही अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश अखलाकी की तारीफ तो कुरान शरीफ में भी हुई है कि अगर तुम सख्त मिजाज होते तो लोग तुमसे दूर भाग जाते। तो इसलिए आप भी जो है ना खुश मिजाज होइए और मिजाज अच्छा हो तो फिर लोग आपकी शक्ल की कमियां आपका गंजपन आपका काला रंग आपका मोटापा कहीं कहीं आपकी गुर्बत भी इग्नोर कर देंगे। और अगर आप में आप लाख अमीर सही और खूबसूरत सही लेकिन आप में ऐसी खूबियां नहीं है तो फिर लोग बोलेंगे बस रहने ही दो बस रहने ही दो। खैर ये हमारी बातें हैं आपकी क्या बातें हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए हमें बताएं। मेरे पास हम तो बस यही बातें करते हैं, मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय ये जानने का कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो खैर आप हमें बताएं, हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे, तो हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको भेज देंगे आप 3636 पर। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपके लिए वाइटल साइंस के वास में प्ले करेंगे ये सॉन्ग की यारियां और वो दोस्त जो दोस्ती तोड़ के चले जाते हैं उनको नींद कैसे आती होगी। जब से ये गाना मैंने सुना है मैं यही सोच रही हूँ वाकई में यार बेवफा लोगों को नींद कैसे आती होगी, आइए सुनते हैं।

0: Good morning, Pakistan, on FM 100.
1: एक और संगे मील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: 100 FM
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBO।

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? चौबीस इंडियन रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और चौबीस इंडियन रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
3: दुनी दो दो दुनी चार,
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
9: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
10: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: This program is brought to you by
12: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
13: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and Dettol Cool Soap, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Door Bhagaye,
8: and HBO Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
14: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
13: एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: और संगेमील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: 100 FM।
3: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: 100 FM।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
5: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
4: 100 FM।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
8: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
6: Dettol Cleanser, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Door Bhagaye,
0: and
3: HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
9: and Hyundai Laya Hai Elantra 1.6 Special Edition. और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: एंड
6: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश।
8: एंड
11: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: खवातीन और हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

शॉपिंग वो करती हैं तो अपने हस्बैंड के लिए भी जो है ना थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े ले आए. वो बेचारे वही कपड़े पहन पहन के ऑफिस जा रहे हैं. और मतलब ये क्या, वो मैंने एक बड़ा अच्छे डायलॉग ड्रामे में देखा था कि जिस तरह मर्द ऑफिस जाते हैं उससे उनकी बीवी के सलीके का पता चलता है. कि जितना बीवियां जो ख्याल करती हैं अपने हस्बैंड से, प्यार करती हैं, वो बड़ा तैयार करके भेजती हैं अपने हस्बैंड को कि ये लें जी आप जो है ना, वो कंघी करके जाएं, कंघी भी करके भेज रही होती हैं, भले बाल कम ही सही कंघी करके जाएं, जरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लें. कि मतलब ऑफिस की लड़कियां क्या सोचेंगी कि बीवी ने ऐसे ही उठाकर भेज दिया है. और नहीं, खैर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग अपना बहुत ख्याल भी करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे तैयार, बड़ा अच्छा परफ्यूम, तो इम्प्रेशन पड़ता है. खैर हमारी बात थी दोस्ती की, और दोस्ती का मैं यही कहूंगी कि मतलब ही लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए. इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आया हुआ था और वो कह रहे थे कि वो उनके कोई कम दोस्त हैं मगर जो है ना वो बड़े सिलेक्टेड दोस्त हैं. तो दोस्ती, दोस्त कम हो मगर अच्छे हों, क्योंकि कहते हैं वो वाकई में सही बात है कि दोस्त होता नहीं आपका हर हाथ में लाने वाला. और वो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम समिया जी, खुद गर्ज झूठे वादा खिलाफ शख्स से दोस्ती कभी ना करो. मैंने सिलेक्टेड दोस्त रखे हैं, ओनली 5 फ्रेंड्स इन लाइफ. और जहां तक ये भी है कि मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा जो लोग अपने आप को ही देखते रहते हैं गुड लुकिंग होके, उनसे भी दोस्ती ना करें. आप अगर आपके दोस्त आसपास सिगरेट पीते हैं बहुत ज्यादा या किसी तरीके की एडिक्शन है उनको, तो या तो आप उनको रोकें कि यार मतलब खुदा के लिए, क्योंकि सिगरेट बहुत खतरनाक है, या किसी किस्म का कोई ड्रग्स लेना, या तो आप उनको रोकें या उनसे अलग हो जाए फौरी. क्योंकि अगर आप उनसे दोस्ती छोड़ देंगे तो शायद वो एहसास करें कि उन्होंने इतना प्यारा दोस्त खो दिया क्योंकि वो कुछ गलत राह पे है. अपने गलत राह पे या तो दोस्तों को हिदायत दें कि भाई तुम ये एडिक्शन छोड़ दो, ये बुरी आदतें छोड़ दो, या फिर आप ही उनको छोड़ दें. क्योंकि फिर उनको कभी भी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं अगर आप उनके साथ साथ रहेंगे और उनको टोकेंगे भी नहीं, रोकेंगे भी नहीं, और मुस्तकिल उनको बोलते रहें कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो. कि अच्छा दोस्त वही होता है जो इंसान को अपने दोस्तों को गलत रास्ते पे जाने से रोके. इसलिए मैं इनको रोकती रहती हूँ कि प्लीज प्लीज वहां मत जाए, ऐसे लोगों से दूर रहे. तो ये बहुत जरूरी हमने बातें दी आज. हमने बड़ी रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर कि किन लोगों से आपने दोस्ती नहीं करनी चाहिए. और नसीम पटेल जी कैसी हैं आप? और कुछ मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि रेडियो पे आके मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ के. बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने काम करने की जगह पे इतने अच्छे दोस्त मिल जाते हैं. एक तो ये है और दूसरे वो भी हैं, और तीसरे हकीम शकीर साहब हैं, नसीम पटेल जी हैं, आबिद अमी साहब हैं, इकबाल हुसैन साहब हैं, तुमको मतलब दोस्ती कहूंगी, अदनान भी हैं. तो मतलब इन लोगों से मैं सीख रही होती हूँ, और जब मेरी उनसे मुलाकात होती है या उनके मैसेज में पढ़ रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी लिसनर का नहीं, किसी दोस्त का मैसेज आ गया है. और इस तरह वसी साहब हैं, बड़े जहीन समझदार आदमी, कभी कभी मैसेज करते हैं. तो आई एम वेरी लकी लाइक दैट कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले. और जब हकीम शकीर साहब या नसीम पटेल जी से मुलाकात होती है तो मैं तो चाहता कि वो लोग बोलते रहे, मैं उनकी बातें सुनती रहूं क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हो रही होती हूँ. खैर और जाते जाते मौला अली का बस एक कॉल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मौला अली बहुत हिदायत करते हैं अपने लोगों को कि किस तरीके से लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए. उनमें से वो कहते हैं, अच्छा मौला अली को कंजूस लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो कहते थे कंजूस लोगों से कभी दोस्ती ना करो क्योंकि वो कभी भी तुम्हें उस मौके पर खर्च नहीं करने देंगे जहां पर खर्च करना चाहिए. इसके अलावा बुजदिल लोगों से कभी दोस्ती ना करो कि बुजदिल लोग खुद तो डरे रहते हैं और आपको भी कुछ करने नहीं देते. झूठे इंसान से भी कभी दोस्ती ना करो क्योंकि जो झूठा इंसान होता है, अगर आपको पता चल जाए कि एक इंसान झूठ बोलता है तो फिर, क्योंकि झूठ बुराइयों की जड़ है, तो अगर वो झूठा है तो ये हो सकता है कि उसमें और बहुत सारी बुराइयां हो. तो अगर आपको किसी के बारे में पता चल जाए कि वो एक झूठा इंसान है, आपको उससे फौरी दूर हो जाना चाहिए. तो मेरे ख्याल से मौला अली ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है कि कंजूस, बुजदिल और झूठे लोगों से दूर रहना चाहिए. और अगर हम ये देखेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बुराई आई थिंक बहुत ज्यादा कॉमन है. ऑलराइट, तो फिर हम चलते हैं, और जाने से पहले मैं छोड़े जा रही हूँ आप लोगों के लिए ये ट्रैक, और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज्यादा कुछ सीख गए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में हमारी बातें, हमारी चीजें. ऑलराइट, एंड लिविंग यू विद दिस ट्रैक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.

0: 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: Dettol Cool Soap. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
0: And
4: HBL Free Remakam. Jahan khwab. वहाँ HBL
0: एंड
5: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
0: एंड
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
0: एंड
3: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: And
7: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
8: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
9: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: 100 FM
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: और संगमील उबूर, इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: कमर्स में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: बमस में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: FM 247 365 FM 247 365

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: एक और संगे मील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: dedication for maximum music.
1: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

छह रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Yellow by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील

यस एवरीवन, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल हवाल बता सकते हैं और आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है ये भी आप हमें बता सकते हैं। आई होप सो कि आप सबका दिन भी अच्छा गुजर रहा हो और जिंदगी भी बिल्कुल ठीक ठाक हो, मजे में हो और आज के दिन का आगाज भी अच्छा हुआ, क्योंकि जिस दिन का आगाज बड़ा अच्छा होता है ना उसका अख्ताम भी बड़ा अच्छा होता है। और जरूरी है, मैं कहती हूँ कि कोशिश क्या करें कि सुबह सुबह बड़े बड़े मुंह नहीं बनाया करें, अच्छे अच्छे मुंह बनाया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नेचर होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के कई घंटों तक वो किसी को डायरेक्ट नहीं कर रहे होते, किसी से बात नहीं कर रहे होते। सो यार व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों करते हैं लोग? सुबह का आगाज भी अच्छा करें, रात में जो सोए थे वो आप ही थे ना, तो सुबह उठ के बदल क्यों गए? इसलिए कोशिश क्या करें कि हर चीज का स्टार्ट बड़ा अच्छा किया करें ताकि बाकी टाइम भी जो है ना वो अच्छे से गुजरे। सो भाई आज है 3rd of June, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज मेरे लिसनर्स में से किसी की भी सालगिरह है या फिर कोई और स्पेशल दिन है तो आपको उस दिन की हम एडवांस में मुबारकबाद देते हैं, और अगर है कुछ इंटरेस्टिंग साथ तो आप हमें बता भी सकते हैं और तरीकाकार हमने आपको बता दिया है, वक्फे वक्फे से बताते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं करी, तो आज बिल्कुल हम आपसे ये करेंगे, एक सवाल पूछेंगे इंटरेस्टिंग सा है जिसे आप याद कर रियलाइज करेंगे कि अरे हाँ इससे तो हमारी मेमोरीज जुड़ी हैं। तो वो क्या सवाल होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अदद ट्रैक एंड देन वी बी राइट बैक।

0: और संगमील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने, लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
0: एक और संगमील उबूर, इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद।

यस एवरीबॉडी, सो वी आर बैक और हम आ चुके हैं वापस। और मैंने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए हमने कोई सवाल नहीं पूछा आप लोगों से, तो बिल्कुल भाई आज का हमारा सवाल आप लोगों से जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये सवाल आपको बचपन की जानिब भी लेके जा रहा है। और बचपन के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बचपन में, अभी भी बहुत सारे लोग जो कि फिटनेस फ्रीक हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो अब लोग सोच रहे हैं क्या बात है, बचपन की बात हो रही है, फिटनेस के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या मौजू है, किस मौजू पर आप करने जा रही हैं बात। तो भाई आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, यानी कि साइकिल का आलमी दिन आज के रोज मनाया जाता है हर साल। और जब बात साइकिल से आती है ना, रिलेट करती है, तो हम सब अपने बचपन में जरूर जाते हैं। मुझे तो साइकिल इतनी पसंद है, अभी भी मैं साइकिल देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आई कांट वेट, बिकॉज साइकिल से ज्यादा बेस्ट ना कोई चीज नहीं हो सकती। और साइकिल मुझे हमेशा से याद है, जब हम बहुत छोटे थे और साइकिल चलाना शुरू की थी ना, तो एक चीज हमने याद की थी और वो सभी बोलते थे कि जो साइकिल चला लेता है ना, फिर वो हर व्हीकल चला लेता है, उसके लिए फिर कोई चीज मसला नहीं होता, वो फिर गाड़ी भी चला लेगा, वो फिर बाइक भी चला लेगा। तो साइकिल चलाने में ना एक ये मोटिवेशन ने बड़ा सपोर्ट किया कि भाई एक दफा साइकिल अगर चलानी आ गई ना, तो फिर हम कोई भी व्हीकल आसानी चला सकते हैं। और तीन पहियों वाली साइकिल चलाने से शुरू करते हैं, फिर दो पहियों वाली पे आते हैं, फिर बड़ा मजा आता है। तो साइकिल से जुड़ी बहुत सारी यादें हम सबके पास मौजूद हैं। तो भाई साइकिल क्या आपने अपने बचपन में चलाई, उससे गिरे, साइकिल चलाना बहुत सीखी लेकिन कभी ना सीख पाए, तो साइकिल से जुड़ी आज हम करेंगे बहुत सारी बातें, यानी कि आज आप हमें अपने बचपन की याद बताएंगे जो कि साइकिल से जुड़ी होगी। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, और हमें जरूर बताएं कि क्या साइकिल से जुड़ी कोई याद आपके पास भी मौजूद है। अगर है तो आप हमसे जरूर शेयर करें, मैसेज कर आप ये याद हमसे शेयर कर सकते हैं। और जब ये बात होती है तो हम बचपन में तो जरूर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा साइकिल को बचपन में चलाया जाता है, तो जब भी बात बचपन की हो तो हम इस ट्रैक को जरूर करते हैं शामिल। तो बिल्कुल इसे करते हैं शामिल और फिर वापस आके आपके मैसेजेस को करते हैं शामिल साइकिल से जुड़े।

0: कितने अच्छे। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। और वाकई में आपके बचपन के दिन आपको बैठे बिठाए याद आ जाते हैं, अक्सर औकात किसी बच्चे की कुछ हरकतें देखकर आपको बड़ी हंसी आती है और आप अपने बचपन में जरूर जाते हैं। और हर इंसान के अंदर एक बच्चा जरूर मौजूद होता है, बस लोग उसका इजहार नहीं करते। लेकिन मैं कहती हूं कि होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, इंसान को लाइवली होना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में जिसे वो करके अच्छा महसूस करते हैं। हम बहुत सारी चीजें ये सोचकर भी नहीं करते कि ये बहुत चाइल्डिश लगेगा या ये पता नहीं कैसे लगेगा, और हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है। हम सबसे पहले अपने से पहले भी ना दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, और हमें बात भूल जाते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, बस क्या करें ऐसे ही करते हैं हम लोग। खैर जी, आज बात हो रही है साइकिल के हवाले से कि साइकिल से जुड़ी कोई बचपन की याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। जरीनूर कहती हैं सलाम, कैसी हैं आप, आपके लिए दुआ, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। और जरीनूर सेम गोज टू यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मजे में हूं। आज हम लोग साइकिल पर बात कर रहे हैं कि साइकिल से जुड़ी कोई आप अपनी याद हमें बताएं, क्योंकि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। और साइकिल से जुड़ी मेरे पास तो बहुत सारी यादें मौजूद हैं। अगर मैं अपने बचपन के बारे में बात करूं तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया है साइकिलिंग। इनफैक्ट अभी भी मैं साइकिल चलाती हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है साइकिलिंग और इसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की अपने बचपन में साइकिल चलाने की, जो वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और इसलिए नहीं हो सके क्योंकि अगर आपके दिल में एक डर बैठा हुआ होना तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके हमने ना अपने दिल में एक डर बिठाया हुआ होता है, और जब डर बिठा लिया हो ना तो फिर वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस बात से तो मैं बहुत अग्री करती हूँ। हकीकत है कि कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिससे आप बड़ा डरते हैं, और जब आप उनसे डरते हैं ना, चाहे वो जितने भी बेचारे ऐसे ना भी हो, लेकिन आपके जहन में आपके दिल में ना एक डर बैठा हुआ होता है कि मतलब पता नहीं क्यों एक खौफ होता है, और इस वजह से आप अक्सर औकात सही काम करते करते भी उनके सामने गलत कर देते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत डरते हैं। लेकिन यार इस फेयर को निकालना चाहिए, अपने काम को करना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है ही लेकिन नामुमकिन नहीं है, और करना चाहिए बिल्कुल भाई। ऐसा करके ही आप अपनी जिंदगी को अच्छे से मजे से गुजार सकते हैं। अच्छा भाई, तो आज जो बाईसाइकिल डे तो मनाया जा रहा है, इसी के साथ साथ आज नेशनल एग डे मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल नहीं लेकिन नेशनली तौर पर अंडे का दिन भी मनाया जा रहा है कि अंडा इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ये बात तो हम सब जानते हैं और अच्छी बात है भाई। जून में काफी इस तरह के दिनों को मनाया जा रहा है, कभी एग डे, कभी मिल्क डे, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से मालूमात फराहम की जाए कि जी रखें अपना भरपूर ख्याल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं जो आपको फायदा पहुंचाता हो, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, आज नेशनल चिकन सैलेड डे भी मनाया जाता है। ओह, दैट्स आल्सो वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया है। चिकन सैलेड भी अच्छी लगती है, सब्जियों में थोड़ी सी चिकन चंक्स डाल दें वो, लेकिन ये सैलेड भी भाई हर कोई अलग अलग तरीके के बनाता है। कुछ लोग बड़े शानदार बनाते हैं और कुछ लोग बस सैलेड के नाम से बड़ा ही यानी सैलेड के नाम सुनते हुए कहते हैं अल्लाह नहीं कौन खाएगा। लेकिन मुझे लगता है सैलेड बड़ी मजे की होती है, बस अच्छी बनेगी भी हो। मुझे लगता है सैलेड ना किसी भी खाने में चार चांद लगा देती है। क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी सवालात भी एकदम से प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन मेन सवाल आज हमारा आपसे ये है कि साइकिल से रिलेटेड अपने कोई बचपन की मेमोरी हमसे जरूर शेयर करें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, की एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। चलते हैं ब्रेक की जाने, बातें वापस ट्रैक के साथ।
1: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकाले। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: 100 ایف ایم۔
5: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365 fm247365

यस एवरीबॉडी, सो आई एम बैक। और इसी के साथ साथ भाई, आज हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि बचपन में साइकिल से रिलेटेड कोई आपकी दास्तां या कोई कहानी या कोई वाकया जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जा रहा है। तो इसलिए आज हम आपके बचपन में जान रहे हैं कि आपने अपने बचपन में कभी साइकिल चलाई, चलानी सीखी, या बहुत दफा कोशिश की लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाए, या नहीं भाई आप बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं और आपको साइकिल चलाना किसने सिखाई। बहुत सारी मेमोरीज हैं। एक साइकिल की बात करें तो इससे बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने साइकिल चलाना अपनी साइकिल पे नहीं बल्कि अपने दोस्तों की साइकिल पे सीखी है, ये भी एक बात होती है। और इतना मजा आता है कि भाई साइकिल चाहे किसी की हो लेकिन सब चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग एक फ्लैट में रहते

एंजॉय कर रहे हैं। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग एक फ्लैट्स में रहते थे, तो वहां पे जो हमारे दोस्त होते थे उसमें एक दोस्त लोग नए शिफ्ट हुए थे, तो जो उनकी साइकिल इतनी मजे की थी कि उस साइकिल पे सीट नहीं थी और वो साइकिल को खड़े होकर चलाना था, और जब आपको साइकिल चलानी ना आए तो एक तो बैठे भी नहीं खड़े होकर चलाना, तो एक बहुत डिफरेंट चीज लगती है। तो सब बगैर सीट की साइकिल को इतने शौक से चला रहे होते थे, इतना एंजॉय कर रहे होते थे कि जैसे एक नया एडवेंचर है जो सब कर रहे हैं। लेकिन बचपन की यही चीजों में तो मजा आता है जहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई मुकाबलेबाजी नहीं होती, बस एक एंजॉयमेंट होता है जो सब साथ मिलकर कर रहे होते हैं। और बाद में आप उन्हीं दिनों को याद करके कह रहे होते हैं, अल्लाह वो दिन कितने अच्छे दिन थे जब कोई मुकाबलेबाजी नहीं, बस एक मजा होता था, सबका साथ होता था, सबके साथ हम चीजों को सीख रहे होते थे, तो वो बड़ा गोल्डन टाइम हुआ करता था। तो भाई जरीन नूर कहती हैं, आज बचपन याद करवा दिया साइकिल का पूछकर, मैंने बहुत साइकिल चलाई है जरीन नूर, अरे वाह जबरदस्त। कहती है मुझे सीखनी भी नहीं पड़ी, बस जैसे ही साइकिल पर बैठी और बहुत दूर निकल गई, घर आकर अम्मी ने डांटा और कुछ नहीं, मजा बहुत आया। क्या दिन थे। अरे वाह भाई जरीन नूर तो मल्टी टैलेंटेड निकली, कह लेंगी कि कभी साइकिल चलाना सीखी नहीं, खुद ही बैठी और चला दी, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। और ऐसे थोड़ा सा ना डर निकालना पड़ता है तभी आप जाके अच्छी साइकिल चला सकते हैं, तो वेरी गुड भाई। जरीन नूर ने तो हमसे अपनी दास्तां शेयर कर ली है साइकिल से रिलेटेड। अब आप लोगों की बारी है कि आप हमें बताएं कि साइकिल से जुड़ी क्या याद है आपकी, और कितनी साइकिल चलाई अपने बचपन में, या कोई किस्सा या कोई कहानी जो आप हमें सुनाना चाहते हैं तो जरूर सुनाएं। हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार, चलते हैं ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस कुछ ही देर में।

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: हंडे लाया है Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: This is the lunchtime special. Only on FM100.
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस एक बार फिर से और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल हमारा और आपका साथ 12 से 2 के दरमियान मंडे टिल सैटरडे और ये साथ हमारा और आपका कायम और दायम है और गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ जारी है. आज हमने आपसे ये पूछा था कि जी हाँ, साइकिल से जुड़ी कोई याद जो आपको याद हो आपके बचपन में कि किस तरह आपने साइकिल चलानी सीखी या फिर साइकिल चलानी सीख पाए या नहीं सीख पाए या बहुत दफा गिरे और गिर के सीखी. मतलब बहुत सारी मेमोरीज होती हैं हमारे बचपन में. दोस्त की साइकिल पर दोस्त साइकिल चलाना सीखी या क्या सूरत हाल रही भाई, इस हवाले से गुफ्तगू आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है. आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत यह होती है कि एक अदर ट्रैक हम करते हैं तमाम सुनने वालों को डेडिकेट. तो साइकिल पर गुफ्तगू चल रही थी तो मैंने कहा ठीक है जी, साइकिल से ही रिलेटेड एक ट्रैक को शामिल करते हैं और फिर आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

तो आ जाते पैजा साइकिल से। आप लोग सुन रहे थे ये ट्रैक और साइकिल पर बात चल रही थी तो इसलिए मैंने इस ट्रैक को शामिल कर लिया है। और इसी के साथ साथ जरीन ने अपना लंच भी बता दिया है, कहती हैं कि आज खाने में पालक कीमा और बॉयल चावल हैं, जबरदस्त, दैट्स रियली नाइस, ये तो बड़ी मजे की चीज है भाई। अच्छा कीमे की वैसे बहुत फैंस हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है, कीमा इज सो गुड। कीमे को भी मुख्तलिफ तरीकाकार के जरिए बनाया जाता है, बट द सैड थिंग इज दैट कि मैं कीमा नहीं खाती और मैं नहीं खाती, बहुत गलत बात है, कीमा खाना चाहिए और कीमा बड़ा मजे का लगता है दीगर तरीकाकार के जरिए जो बनाया जाता है, बट मैंने कभी कीमा नहीं खाया तो ये गलत बात है। लेकिन मैंने कीमे और चावल का कॉम्बिनेशन सुना है कि लोग बड़े शौक से खाते हैं, कीमा पुलाव तो बनता ही है लेकिन ऐसे भी कि अलग से कीमा और फिर बॉयल चावल के साथ, इट लुक्स सो गुड, इट नॉट ओनली लुक्स गुड, इट टेस्ट आल्सो वेरी गुड। ऑलराइट जी, हमारे पास अली का मैसेज आया है। अली कहते हैं आप ही बचपन में तो बहुत साइकिल चलाई, बहुत गिरे लेकिन एक्सपर्ट हैं, वाह ये अच्छी बात है कि बहुत साइकिल चलाई, बहुत गिरे भी लेकिन एक्सपर्ट हैं, ये तो भाई अच्छी बात है और गिरकर ही बंदा सीखता है। कोई भी चीज आप फौरन से नहीं सीख पाते, द थिंग इज दैट कि टाइम लगता है। एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी चीज हो ना, जब आप इस चीज पर बिलीव करेंगे ना कि हर चीज थोड़ा सा वक्त लेती है तो फिर आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं। आजकल के टाइम में हकीकत है कि मैं गैजेट्स को ही कहूंगी कि इन्होंने हमें इतना फास्ट कर दिया, इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि हम चाह रहे होते हैं कि इंसान भी मशीन बन जाए, यानी कि रैपिड हमें रिस्पांस दें या फौरन से दें जैसे हमारे मोबाइल फोन हमें देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो आपका वेट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो भी आप चीज करना चाह रहे हैं ना, वो टाइम जरूर लेती है, तो थोड़ा सा वक्त जरूरी है और फिर जाकर आप वो चीज सीख पाते हैं या वो काम कर पाते हैं, ये चीज बड़ा मैटर करती है। ऑलराइट जी, लंच में क्या है आपके, ये होता है हमारा कंपलसरी सवाल। तो आपके लंच में क्या मौजूद है, क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें जरूर बताएं। व्हाट्स इनसाइड योर डब्बा, व्हाट्स इनसाइड योर कढ़ाई, या फिर व्हाट्स इनसाइड योर पतीला तो लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। तो हम जब तक ट्रैक को शामिल करते हैं फिर आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: और संगे मील उबूर। इफ्तिता शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: कूल किंग। अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे

0: अगर आप है इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
6: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
7: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
8: This program is brought to you by
9: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
12: All right, जी, so we are back. और इसी के साथ साथ वापस आ चुके हैं तो आपको एक जरूरी बात बताते चलते हैं। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच।

0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए. वेट से आगे का सोचें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

ऑल राइट जी, सो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, क्योंकि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आज हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे थे कि साइकिल से जुड़ी कोई याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम आपसे भी आपके बचपन की याद पूछ रहे हैं साइकिल से जुड़ी। तो बचपन में साइकिल चलाई नहीं चलाई, नाकाम हुए, लेकिन वो जो एक ट्राई टाइम होता है, एक फेस होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसा अगर कोई फेस आपने भी किया है एंजॉय, तो हमें जरूर बताएं। अच्छा भाई, एक नया सर्वे आ चुका है और एक नए सर्वे के तहत ये पता लगाया जा चुका है कि मैरिड पीपल हैप्पियर देन सिंगल। सर्वे के तहत ये कहा गया है कि भाई शादीशुदा लोग जो हैं वो खुश हैं, ना कि वो लोग जो कि गैर शादीशुदा यानी कि सिंगल हैं। तो नए सर्वे ने इसको पता लगाया कि मैरिड पीपल इज सो हैप्पी एंड दैट इज सो नाइस। जहां भी खुशी की बात हो भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं कहती हूँ जबरदस्त है कि भाई लोग खुश हैं, और अच्छी बात है कि लोगों को खुशी रहना चाहिए और अच्छी बात है कि लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। तो सर्वे ने इस बात को साबित कर दिया है कि भाई मैरिड लोग हैप्पी हैं, सिंगल लोग जरा सैड हैं। तो सिंगल लोगों की जानिब यह इशारा है कि जी अब आप भी अपने बारे में सोच लें ताकि आप भी मजीद खुश नजर आए। तो भाई ये था एक नया सर्वे, तो मैंने कहा ठीक है जी, ये नया सर्वे आप लोगों से शेयर करते चलते हैं, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है कोई भी सर्वे या कोई भी रिसर्च आप लोगों से शेयर करने में। ऑल राइट जी, हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कहते हैं आप ही लंच में तो दाल है, लेकिन साइकिल तो बहुत चलाई है, कितनी सारी बातें हैं, बड़ा मजा आता है। अरे वाह, मजा तो बहुत आता है, सही बात है। और मैं तो कहती हूँ अभी भी साइकिल मेरे सामने आ जाए ना, सो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि पता नहीं कि मुझे साइकिल में बड़ा मजा आता है। और मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे याद है कि मतलब पहले तो वही वाली तीन पहियों वाली साइकिल तो इट्स वेरी इजी, फिर दो पहियों वाली चलाई, अच्छा फिर उसके बाद भी जाहिर है जब छोटे से बड़े होते रहते हैं तो जिद्दत आती रहती है साइकिलों में भी, तो वो ब्रेक वाली साइकिल बड़ी पसंद थी कि भाई ब्रेक वाली साइकिल खरीदेंगे। और मेरे पास साइकिल थी, फिर मेरे कजिन्स थे तो उनके पास वो ब्रेक वाली साइकिल होती थी, तो बड़ा मजा आता था उनके यहाँ चलाना। और उनकी साइकिलें बहुत बड़ी थी, मतलब वो भी छोटे थे हम भी छोटे थे, लेकिन साइकिलें ना और बड़ी थी, लेकिन बड़ा मजा आता था उसे वो ब्रेक वाली साइकिल चलाने में। उसमें गिरे भी, चोटें भी लगी, एक दफा तो मैं मिट्टी मिट्टी हो गई, और वो पता नहीं कैसे मैं मिट्टी के पानी में गिरी थी। और मुझे याद है कि मैं जो कपड़े पहन के आई थी जो कपड़े पहन के मैं साइकिल चला रही थी, और जब मैं वापस आई अपनी कजन्स के घर ही रहने गई हुई थी, तो मतलब मेरी पप्पो मुझे देख के हैरान हो गई, तुम क्या किया है? तो मैं ऐसे पानी में जाके गिरी, वो उसमें मिट्टी भी थी, सब कुछ था, तो मैं सर से पैर तक ना मिट्टी वाले पानी का शिकार हो गई थी। लेकिन वो एक्सपीरियंस बड़ा मजे का था, मुझे अभी भी ना वो साइकिलें बड़ी अच्छी लगती हैं। ब्रेक वाली साइकिल का ना एक स्टाइल ही अलग होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो आज साइकिल नहीं एक बाइक चला रहे हैं, तो इसलिए बड़ा मजा आता था कि भाई किसी भी मोमेंट में आपने ब्रेक लगा दिया। बट इट्स ऑल्सो वेरी रिस्की, क्योंकि आप अचानक से ब्रेक लगाएं तो ये होता तो खतरनाक है, लेकिन मुझे ब्रेक वाली साइकिल ना बड़ी पसंद थी, मैंने बहुत चलाई भी है। और भाई आज तो साइकिल ही साइकिल का जो है वो जिक्र चल रहा है और मैसेजेस भी हमारे पास आ चुके हैं, तो जल्दी से एक ट्रैक शामिल करके ना आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस इस ट्रैक के पास।

0: PM. This time check is brought to you by
1: Renu by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur yellow ke through payment karo.
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध
4: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
5: ये क्या है भाई
2: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो JazzCash पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
1: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय JazzCash
2: अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
0: This program is brought to you by
6: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features
0: Like us on Facebook.com/FM247

0: Radio. Radio.
1: Genie
0: in Radio. Radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. आप लोग बिल्कुल हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. And तरीकेकार बहुत ही आसान है. Just type KHI then leave space. आपका message, आपका नाम, आपकी request और उसे 3636 पर भेजना है. यानी कि 3636 पर भेजना है. Make sure जब आप हमें message करेंगे तो आपने अपना नाम जरूर लिखना है. साथ में आपको बताते चलूं facebook.com/rj.jasmine वहां पे आप जाके इनबॉक्स में हमें कोई भी ट्रैक अगर सुनना चाहते हैं तो वहां पे आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आपने कौन सा गाना सुना है और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है देन आपने हमें पाकिस्तानी मूवी का नाम बताना है और सिंगर का नाम बताना है और उसे 3636 पर या फिर facebook.com/rj.jasmine पे जो है वो भेज देना है. So meanwhile, जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पे और आप साथ में बता सकते हैं कि आप लोगों की बकरा ईद जो है वो कैसी गुजरी. मैसेज करके बता सकते हैं और ऑब्वियसली अब वीक डे स्टार्ट हो चुका है यानी कि वीकेंड खत्म हो चुका है, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, बकरा ईद भी गुजर गई है. कैसी रही बकरा ईद, क्या क्या किया आप लोगों ने, कैसा रहा फर्स्ट डे, कैसा गया सेकंड डे, कैसा गया और थर्ड डे कैसा गया, आप हमें बता सकते हैं और मैसेज करके चाहें तो बता सकते हैं या पेज पे बता सकते हैं. मीनवाइल मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा.

ready to now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log bilkul hame messages kar rahe hain 3636 par. Tarike kar bahut hi aasan hai, just type KHI then leave space, aapka message, aapka naam, aapki request aur se 3636 par bhej dena hai. Saath mein aap chahein to facebook.com/rj.jasmine pe inbox kar sakte ho bilkul, aur koi bhi gana agar aap sunna chahte hain to aap wahan pe mujhe bata sakte hain मैसेज करके, और 3636 पर भी चाहे तो मैसेज कर सकते हैं आप हमें. सो जनाब आप लोगों को बताते चलें, हमारे पास मैसेज आया है नायमा का. वालेकुम अस्सलाम नायमा, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसी हैं. कह रही हैं ईद बहुत अच्छी गुजरी. पहले दिन कह रही है मटन बिरयानी एंड मटन कोरमा इनका मेन्यू था और कबाब, जबरदस्त भाई.

0: ऑलराइट, सेकंड डे उन्होंने कहा है कि बीफ से रिलेटेड सारी चीजें थी, बारबेक्यू घर पे इनके हुआ था, जबरदस्त भाई, और थर्ड डे दावत थी, दावत में ये गई थी, ऑलराइट, जबरदस्त भाई. सो दीज आर सम यू नो हैप्पी मोमेंट्स जो हम इन ओकेजन्स पे एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे तरीके से. सो आप लोग हमें मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक, और ये रिक्वेस्ट है शनीला की. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.
1: HI space your text message, send it to 3636.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.
2: Ek aur sangameel ubur iftita sharae bhutto chairman Pakistan People's Party Bilawal Bhutto na sirf usi awami falsafe ki ameen hai balki usi awami soch ki takmeel mein masroof e amal hai anthak mehnat ka shahkar taqreeban 39 kilometer taveel छह रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: This program is brought to you by
8: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: Genie in Radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan, and आप लोग हमें messages करें 3636 पर. तरीके कार बहुत ही आसान है. Just type KHI then leave space आपका message, आपका नाम, आपकी request, और उसे 3636 पर भेजना है. So messages हमारे पास काफी सारे आ रहे हैं पेज पे भी, and we've got a message here from नबीहा. वालेकुम अस्सलाम. और ये पेज पे उन्होंने मैसेज किया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं. एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग, कहा है आतिफ असलम का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. चलें ठीक है, डेफिनेटली हम कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड इट्स 40 मिनट्स पास टू ऑन द डायल राइट नाउ, विच मीन्स के 3 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं. आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पे, एंड अगर चाहते हैं तो पेज पर भी आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन towards another track. This is going to be the song called Jal Pari. Milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahega.

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365 KHI space your text message. Send it to 3636.

listener, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. We've got a message here from Bilal. Walaikum assalam, Bilal. Bilkul theek thaak. Aap bataiye, aap kaise hain, Bilal? And thank you so much for your message. So he has requested for the song called Kali Kali Zulfo Ke Phande Na Dalo. And if you're listening, so we are moving on towards this track. आप लोगों को बताते चलें, आप लोग मैसेजेस करते रहिए पेज पे भी facebook.com/rz.jasmine पे एंड 3636 पर. तो आप लोग हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस ट्रैक काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर एंड मिलते हैं इस गाने के बाद आप लोगों से.

Jeez, now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and it's 58 minutes past you on the dial right now. And messages hamare paas jo hain wo kafi sare aa bhi rahe hain 3634. And पेज पे भी आप लोग हमें कॉमेंट्स कर रहे हैं ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश आरजे डॉट जैसमिन JAZMINE. सो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने बताना है आप लोग का ईद के दिन कैसे गुजरे एंड वॉट वर द एक्टिविटीज, क्या क्या किया आप लोगों ने, आप लोग हमें बिल्कुल बता सकते हैं. सो जनाब मैसेजेस भी काफी देर से आए हुए हमारे पास. जयपाल का मैसेज आया है हमारे पास और वो कहते हैं कि हेलो जैस्मिन, सॉन्ग जो है वो भूलने वाली नहीं. यार मेरी कोशिश होती है कि मैं सॉन्ग नहीं भूलूं. हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ. अच्छा दो ऑप्शंस ये हैं, जलवा सॉन्ग, सॉन्ग इज जलवा, और ऑप्शन टू हाय दिल बेचारा. अच्छा ठीक है, हाय दिल बेचारा चला देंगे आपके लिए. सही है जयपाल. ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो आग लगे बस्ती में, इन्होंने इस मूवी से रिक्वेस्ट किया है. गाना अच्छा है वो, तो डेफिनेटली हम ये चला देंगे. एंड हमारे पास मैसेज आया है जरीन नूर का और वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप बताइए आपकी कैसी तबीयत है जरीन नूर, और ईद कैसी रही आपकी, आप हमें मैसेज करके बता सकती हैं. चाहे तो पेज पे भी मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं है, वहां से भी आपकी रिक्वेस्ट और मैसेजेस जो है इंक्लूड करेंगे. तो अभी जो है वो ब्रेक का टाइम आने वाला है, सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए, और फिर जब वापस आएंगे तो फिर हम जयपाल की रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे. हमारे साथ रहिएगा.

0: J-H-I space your text message. Send it to 3636. It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Renu by Just Cash.
2: Abhi Just Cash app download karo aur Yelo ke through payment karo.
0: This program was brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील छह रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365 Let's celebrate 31 years of memories milestone and moments fm 100 pakistan it's a legacy assalamu alaikum pakistan let's celebrate the journey
5: Radio.

0: in radio. Radio.
1: KHI space your text message. Send it to 3636.

जी जनाब, वेलकम बैक. सो यू आर लिसनिंग टू FM 100 पाकिस्तान. ऑलराइट जयपाल, फाइनली हमने आपका सॉन्ग जो है वो प्ले कर दिया. होपफुली अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी. सो इट्स 8 मिनट्स पास 3 ऑन द डायल राइट नाउ. facebook.com/orchard.jasmine पे आप लोग बिल्कुल कमेंट्स कर रहे हैं और 3636 पर भी आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं. एंड शनीला ने हमें कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है, थैंक्स अ लॉट फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग आरजे जैस्मिन. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. एंड हमारे पास खुदा बख्श का जो है वो कमेंट आया है पेज पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं. और कह रहे हैं कि ईद माशाल्लाह अच्छी रही. और कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग लगा दीजिएगा और मेरी तरफ से अपने आप को डेडिकेट कर दीजिएगा. चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट खुदा बख्श, बहुत बहुत शुक्रिया. सो हमारे पास जो है मैसेज आया था रुबाब का, उन्होंने पेज पे कमेंट किया था एंड कहा था कि हल्का हल्का सुरूर जो है वो सॉन्ग प्ले कर दीजिए. चलें ठीक है, डेफिनेटली प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, आयशा ने रिक्वेस्ट किया था हर कले सॉन्ग. सो हर कले भी चलाते हैं. पहले हम हल्का हल्का सुरूर प्ले करेंगे, उसके बाद फिर इट विल बी फॉलोड बाय हर कले. सो स्टे ट्यून्ड.

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: Genie in radio.

Acha. Now we come to run things on the road. See?

0: Radio.
1: Radio.
2: KHI space your text message. Send it to 3636.
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।
4: कूल किंग।
5: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
1: In radio.

0: Radio. Radio.
1: Okay, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and हमारे पास जयपाल का मैसेज आया है. लिखा है, आरजे मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं. हम कभी कभी अपनी सिटी के बाहर जब बागों में चले जाते हैं तो वाकई बहुत सुकून मिलता है दरख्तों की वजह से. और अच्छा, कहा है लाड़काना के हवाले से बात करें. बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूं कि जाहिर है जब हम अगर शहर से बाहर निकलें या विलेज वगैरह की साइड पे जाते हैं तो हमने ये चीज देखी होगी कि उधर उस साइड पे ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत है. तो वहां भले ही धूप होती है, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज इसको भी गौर किया होगा कि भले कितनी ज्यादा धूप हो लेकिन उस धूप की शिद्दत में ना वो तेजी नहीं होती है इतनी, क्योंकि ऑब्वियसली एक ग्रीन एनवायरमेंट होता है, जाहिर दरख्त होते हैं, हरियाली बहुत होती है, तो उस वजह से उस धूप की तपिश जो है उस हरियाली में दब जाती है और उस हरियाली की ठंडक जो है वो हमें फील होती है. तो इसी वजह से जो है कहा जाता है, फोकस किया जाता है कि दरख्त लगाना, एनवायरमेंट को ग्रीन रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से. और साथ में जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, एक पॉल्यूशन की गर्माइश होती है जाहिर है, और इसी वजह से जो है ये वजूहात है कि एनवायरमेंट में इतनी ज्यादा जो है वो चेंजेस आ गई है, क्लाइमेट में इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई है. क्योंकि जिस तरह की अभी गर्मी पड़ रही है और जिस शिद्दत से जो है गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वो दिन में तो और सुबह के टाइम भी इवन ऐसा लग रहा होता है कुछ आवर्स में, कुछ पहर में, कि जैसे मैंने अभी बताया कि हीट बर्स्ट हुआ है या इतनी एकदम से गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको फील होगी बहुत ज्यादा. तो इन्हीं सारी बातों के हवाले से जरूरी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्तों को लगाएं और इस बात को बहुत ज्यादा संजीदा तरीके से लें, सीरियस लें. और जाहिर है दरख्त लगाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ये हम आम आवाम आसानी से कर सकते हैं. तो रादर देन कि सोचना कि यार हम क्यों लगाएं, चलो ये लगा देगा, इसको बोल देंगे, ये कर देगा, ये चीज करने के बजाय अगर हम बोलें कि नहीं हम खुद इनिशिएट करेंगे, हम खुद लगाएंगे, तो ज्यादा अच्छा है. तो इसी तरीके से जैसे आप लोग जहां जहां देख सकते हैं कि यहां इन इन जगहों पे दरख्त लगाए जा सकते हैं और ये खाली जगह हैं और यहां पे प्रॉपर एक अच्छी जगह है कि यहां पे दरख्त लगाए जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को इनिशिएट करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बोलें कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रीनरी डेवलप करें ताकि मौसम भी जो है थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो, बारिशें स्टार्ट हों और ये जो इतनी शदीद जो गर्मी की तपिश है थोड़ा सा कम हो. So meanwhile we are moving on towards another track. This is going to be the song called Mand. Milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahiyega.

जी जनाब, वेलकम बैक. सो यू आर लिसनिंग टू एफएम 100 पाकिस्तान एंड हमारे पास शाहिद का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम शाहिद, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड इट्स 51 मिनट्स पास्ट 3 ऑन द डायल राइट नाउ. इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है आसिम अजहर का, सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है फिर कभी. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. बल्कि अभी प्ले कर देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है. सो इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू फिर कभी बाय आसिम अजहर.

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Yellow by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
4: facebook.com/fm247365
5: fm247365 fm100
6: 31 saal fm100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan
5: assalamu alaikum pakistan
7: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you, holding you, with FM 100.

0: और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM247365

Buenas noches.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: एक और संगेमील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
6: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
6: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश

0: डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
1: and
3: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी,
1: and
4: Dettol Cool Soap, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए,
1: and
5: HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
1: एंड
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
1: एंड
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL।
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
8: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and Dettol Cool Soap, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
2: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, वहाँ HBL।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
2: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: Like us on facebook.com/fm247365
13: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
14: This is

0: Your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
3: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
4: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: This program is brought to you by
5: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular Battery दिल को है आराम.
1: And Cool King Hair Oil जैसे चलता फिरता एसी. And
6: Dettol Cleanser ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: And HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
7: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
2: And
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
2: And
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
10: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखा.
11: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
12: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सब कुटिया.
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
6: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: कूल किंग,
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
11: 100 FM।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: कूल किंग,
10: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शौक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
13: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
14: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
15: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जीते 20,000 रुपए, बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: से हाथ उठना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
3: कूल किंग। अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: कूल किंग। बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
8: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
11: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो।
12: ये क्या है भाई?
11: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
11: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
14: This program is brought to you by
15: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and Dettol Cool Soap, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
2: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
14: एंड
16: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
14: एंड
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
18: Like us on facebook.com/fm247365
19: FM 247365

0: vamos.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit karein apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: Cool King.
5: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
6: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
8: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
4: कूल किंग.
7: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
9: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
10: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैज़ कैश.
10: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
7: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: And
12: Dettol Cool Soap, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
1: And
3: HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
1: And
14: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
1: And
12: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: And
2: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: And दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: 100 FM.
15: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: Weight Management Conversation with your doctor today.
1: And
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
7: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: कूल किंग।
9: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
10: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
11: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात। क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबिस इंडियन रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिस इंडियन रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: कूल किंग।
11: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
14: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
15: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
16: ये क्या है भाई?
15: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
16: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
15: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: This program is brought to you by
7: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
17: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें।

0: और संगेमील उबूर, इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
4: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: कूल किंग, बिजली का बिल देखा, आँखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी, जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
14: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
15: तौहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फ़िरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि YouTube, ट्विटर या केबल FM पर इस नौइयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
16: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. Cool
1: King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
3: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
4: एक दो तीन येलो. एक दो तीन येलो.
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: دل کے اطمینان کے ساتھ، اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
12: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
13: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگا۔
12: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
14: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
15: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
12: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
14: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
15: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
14: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
12: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
15: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
12: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: येलो बाय जस्ट कैश।
1: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: और संगमील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: 1, 2, 3, yellow. 1, 2, 3, yellow.
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
8: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM247365
10: Back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is FM 100.
12: Come on.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
2: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: मुकाबले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Come on.
1: FM 100's time check. It's 10 p.m.
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features
1: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
6: FM 247365 FM 100
7: 31 saal FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: Yellow. एक दो तीन Yellow.
1: ये क्या है भाई?
0: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
2: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
0: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
3: This program is brought to you by
4: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

ones for parental guidance. It's strongly advised. So, without much ado, हम करते हैं इस शो को शुरू. आज के हमारे साउंड इंजीनियर हैं गोफरान अहमद, जो कि प्रोग्राम के ऊपर सुपरवाइज भी करते हैं. कोई गलती वलती हो जाए तो हमें बता देते हैं. उन्होंने लिस्ट भी बहुत अच्छी बनाई है और मैं उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूं. आपको ये बताना कि आज जबरदस्त किस्म के मेहमान दो लाया हूं मैं. एक तो बहुत जबरदस्त खातून है, चार्मिंग डैशिंग लुकिंग खातून, और उनका नाम है उज़्मा हफीज. और ये बहुत सारे एंगल से आर्टिस्ट्री के राइटर और कंपोजर हैं, और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं. इसके अलावा इन चीजों में जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर भी हैं इन चीजों में, और बहुत कुछ इज फुल ऑफ सब्सटेंस. और ये अपने एम्पावरमेंट को वुमेन के लिए बायो टेक्निकल काम के इस दौर के साइंटिस्ट के लिए भी काम करती हैं. और इनके आला तालीम के पेश नजर वो एक गुलूकारा और एक फनकार ही खुद अपने हालात और एहसास को म्यूजिक में एक्सप्रेस करते हैं. पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल और कराची

0: और वॉइस सीईओ रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, मगर यह कि मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें मैं वक्तन फवतन आपको मैं बताता रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि फौरन आपकी मुलाकात उनसे कराऊं। तो वेरी शार्मिंग यंग लेडी, और वो ख्वातीन को एम्पावरमेंट करती हैं और एक ही प्लेटफॉर्म फराहम करती है। इसके अलावा इन्होंने जॉइंट वेंचर्स के नाम से प्रोडक्शंस भी किए हैं और एक जबरदस्त नगमा भी तरतीब दिया है जो आपकी खिदमत में अभी पेश करेंगी। मैं पहले इनसे मुलाकात कराता हूं आपसे। ये आपका माइक्रोफोन ये है शायद। यस ऑलराइट, मिसेस ओजमा आपसे हम वेलकम करते हैं आपके अपने शो में, और बड़े खुश हैं कि आप हमारे शो में आए हैं। ऐसी काबिलियत वाली शख्सियत बहुत कम होती हैं, और वो भी खातून। हमारे यहाँ तो अजीब बात है, मर्द हर काम मर्द कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। वो समझते औरत सिर्फ जो है ना घर पे रहती है, रोटियां पकाती है और बस, और हस्बैंड को खरा खरा सुनाती है। मगर ये कुछ खवातीन ऐसी हैं जो चांद पे ले जाते हैं, लोगों को मरीख पे ले जाते हैं। भाई है? सही कह रहा हूं ना? और ऐसे खवातीन भी हैं। और ऐसी खवातीन भी हमारी हिस्ट्री में जो कॉन्करर्स रही हैं, बल्कि उन्होंने सल्तनतें जीती हैं और बहुत लोगों को मारा भी है। तो मैं ज्यादा वक्त रखने के बजाय मैं आपसे डायरेक्ट से मुलाकात करवाता हूं। जी उज़्मा जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप?
0: कैसे आप फील कर रही हैं?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पर आपसे मिलकर। ये वीना सिंगर आइकॉनिक।
0: आज एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक हुआ कि मैं जींस उठा, सब कुछ तैयारी कर ली, आप लोग जहन में था कि आप जल्दी आते, तो अचानक मेरा फोन और मेरा चश्मा ऐनक

0: गायब हो गया। पूरा घर छान मारा,
1: फिर चाबी और फोन और चश्मा ये अचानक से गायब हो जाते हैं।
0: और फोन इत्तेफाक से बेल बंद किया, बता रहा क्योंकि तंग कर रहे थे। अब वो मैं फोन दोस्तों से फोन करवा रहा हूँ, जो इत्तेफाक से मैं रोबेला साहिबा से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, उनसे फोन करा के सब कुछ करा के फोन भी किया तो वो बेल तो आए नहीं। उनसे मैंने गाड़ी बुक कराई,
2: आवाज तो कैसे
0: okay. और जब मैंने गाड़ी बुक कराई और यहाँ तक मैं पहुंचा, अभी आई हैव नो फोन। अच्छा आप कुछ आप कहना चाहती हैं इससे पहले कि मेरे ख्याल में आपका गाना आप गाना गएंगे पहले ना?
1: नहीं सर, आप जो कहेंगे वो पहले।
0: मेरे ख्याल में भाई आप ये गाना चलाएंगे।

0: वाह भाई, मजा आ गया, जबरदस्त, वेरी नाइस। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जी, इन्होंने तो बहुत ही अच्छा गाया, और हमारे साथ एक और ही पटाखा है। और जबरदस्त बात यह है कि वो हारमोनियम लेकर आए हैं और उसमें गाएंगे। मेरे ख्याल में उनसे पूछा जाएगा कि
1: आप क्या गाएंगे।
0: जी फरमाइए, अपना मोहम्मद सलीम खान।
2: जी सर,
0: आप इशार फरमाइए, क्या गाएंगे? पहले उनके इशार बता।
2: मेरी खुद की एक कंपोजिशन है,
0: वो बाप रे,
2: और मैंने उसको खुद लिखा है, तो वो मैं ट्राई करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ,
2: उम्मीद है पसंद आएगा।
0: अगर नहीं पसंद आया तो
2: नहीं, पसंद जरूर आएगा।
0: अच्छा,
2: क्या समा है यहाँ,
0: वाह क्या समा है,
2: हो जाए हम तुम यहाँ।
0: इश्क भी क्या चीज है यार।

0: Very good. Excellent, excellent, excellent.
1: AGS Tubular dikhaye kaam. AGS Tubular dikhaye dil ko hai aaram.
0: Very good.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है?
3: अभी इनसे कुछ सवाल आते हैं.
2: अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है.
4: एक और देवर.
2: अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है. और निशाना हम सब.
3: इनकी तारुफ किया नहीं.
2: रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: Like us on facebook.com/fm247365.
7: It's not just music, it's an addiction. FM 100.
0: Ladies and gentlemen, welcome back from the break. जैसा आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यहाँ दो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट बैठे हैं, स्पेशली यंग लेडी. खैर, आपने बाजा इतना अच्छा बजाया यार, आज का ऐसा है गाले पे. आप बाजा कितने अच्छा बजाते हैं यार. हालांकि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं बाजे के साथ, वो गा कुछ रहे होते हैं, बाजा कुछ बज रहा होता है. वेरी नाइस, बहुत ऑफ यू. आप लोग दोनों बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. अब मैं चाहूंगा कि उज़्मा साहिबा का एक गाना फौरन फौरन चला रहे हैं ना. इस गाने के पीछे क्या स्टोरी है आपकी, क्या कहानी है?
4: एक्सप्रेशन है,
0: इंस्पिरेशन है. किस से इंस्पायर्ड हैं आप?
4: ट्रिब्यूट पेश किया.
0: बहुत अच्छी गाने वाली. मैंने बहुत सारे गाने गाए उनके साथ. डिवाइड सॉन्ग
4: दिल बना हुआ है ये सॉन्ग.
0: अच्छा अच्छा, ये नेक्स्ट यही है. हाँ ओके. ख्वातिन हजरत, आप सुनिए ये जज्बा ए दिल. गाना है, मगर हम इस वक्त जो है ना, हम इनसे सुन रहे हैं.

0: my dear, dear listeners, welcome back from the break. From the song, kitna zabardast gaya Salim sahab ne, ki main to khud hairan ho gaya hoon. Halanki main arsa daraz se aapko sunta aa raha hoon. Har competition mein aap gaate hain, magar aaj to kamaal hi ho gaya. Ye baaje ke saath hi gaye na bhai. Aap baaje ke saath trained ho gaye hain. Aur ye badi baat hai ki baaje ke saath jo gaate hain na, something very big. क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है ना वो सिर्फ बाजे दिखाते हैं. मैं खुद झूठ मूठ बाजे दिखाता हूँ टेलीविजन में. ऐसा बजा रहे हो लोग कि यार गप क्या बाजा बनाया मैंने. तो वो कि हम जो एक्टिंग वगैरह में सिखाया जाता है हमें मेक इट लुक वेरी रियल. तो जैसे आप देखा होगा राज कपूर की फिल्म है, ये वो जो पियानो बजा रहे होते हैं, जैसे दिलीप कुमार है और सितार बजा रहे हैं और लगता है कि वो ही बजा रहे होते हैं. खैर अब हम आते हैं जनाब विद द चार्मिंग लेडी वो है और वी हैव सॉन्ग टू
1: लेकिन उसमें डुएट है वो.
0: चलो
1: चल जाएगा
0: और क्या. मैं भी तो यार सिंगर हूँ और क्या हुआ.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: The voice of the nation. FM 100. 24 hours a day.
4: अब आते हैं सलीम साहब की तरफ और आपने जो ये मुख्तलिफ तीन गाने गाए तो मैं मुझे जो आपकी आवाज में लचक वगैरह जो मुनासिबत नजर आई वो आखिरी गाने में अब लग ही नहीं रहे कि आप नए गाने वाले जो होते हैं ना क्योंकि आवाज में जो है ना वो आज जाने के रेदा करो ये भी सैगल साहब के मद्दाह थे ये भी थे किशोर कुमार भी थे मुकेश भी थे सैगल साहब भी थे और इसलिए भी मैंने फिल्म का गाना गाया था तो उस फिल्म मुझसे भी गवाया और इनसी भी गवाया मगर मेरा गाना उन्होंने बाबरा शरीफ थी कौन थी हाँ नहीं थी वो थी बांग्लादेश की हीरोइन रोजीना थी रोजीना और नदीम थे उन पे पिक्चराइज किया वो तो वो मैंने बड़े गाने गाए उसमें बड़ी मैंने जगह मारी और हो सकता है ये जो गाने के स्टाइल है वो मैंने भी अडेप्ट किया हुआ है जो जो किशोर कुमार फोन तो अब जो है बातें हम करेंगे खातून से अपनी बहुत अच्छा आप मुझे बताइए आपने कितनी शादियां की और कितनी तलाक दी कितना डिफिकल्ट सवाल है मुझसे तो कोई पूछता ना मैं को तो बेताशा बेहिसाब हालांकि कोई नहीं है शादी मतलब वन वॉज डिवोर्स एंड सेकेंड इज प्रेजेंट मगर यू सी वाइफ इज समथिंग एल्स इज नथिंग डू विद एक्स फैक्टर आई मीन शी बिकम्स अ पार्टनर ऑफ योर लाइफ इफ शी इज अ पार्टनर ऑफ योर लाइफ ग्रेजुअली यू दैट थिंग आंख मचोली जो भी करना होता है वो तो मर्द तो करता रहता है मगर वो छोड़ देता मर्द बाज नहीं होता इसके बारे में आपका क्या ख्याल है
5: आई थिंक ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन
4: वो तो वेरी करता है
5: बिल्कुल क्योंकि ये तो मोरालिटी है ना तो अगर मर्द भी बास मर्द भी बहुत लॉयल होते हैं और बास औरतें भी लॉयल होती हैं बास जो लॉयल नहीं होना होता तो वो औरतें भी नहीं होती
4: मेजोरिटी
5: में मर्द लॉयल नहीं होते मैन आर नॉट लॉयल
4: अगर मैं आपसे कहूँ कि मर्द को इसी तरह मैन्युफैक्चर किया गया है
5: नॉट नेसेसरी और इंसान के अंदर
4: नहीं जैसे एक मुर्गा होता है बहुत सारी मुर्गियां होती हैं यू नो व्हाट आई मीन मल्टीप्लिकेशन
5: जानवर और इंसान में फर्क है
4: चलो
5: इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है
4: अच्छा तो आपने शादी आपकी नहीं हुई जहां तक मैं
5: वैसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है मुझे
4: यार शादी कौन सा पर्सनल क्वेश्चन
5: शादी सबसे ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन
4: आप देखें अपने इंडियन आर्टिस्ट में वो बीवियों के साथ आते हैं हर पिक्चर में वही साथ में होती है मतलब ये तो अजीब बात है कि यहाँ से छुपाना एक हकीकत है उससे छुपना नहीं चाहिए हाँ अच्छी बात है जी आई ब्रिंग माय वाइफ इन फ्रंट ऑफ पीपल आई डोंट फील शेम व्हेदर शी इज सैड और शी इज व्हाट एवर बिकॉज शी हैज बिकम अ पार्टनर ऑफ लाइफ
5: It's not about the shame, so about the keeping the things parallel. Like if you are doing something professional and you're doing something personal, so you keep things separate. you don't talk about the family and different things.
6: What do you mean?
5: Yeah, I mean that.
6: That if man does something, the women will do the same thing?
5: No, it's not the same thing, right? Is there, we can take either separate things, like the professional life and the personal life.
6: You think, yes. I think man is a... I wouldn't say necessity, but man and woman, they have made this world.
5: Yeah,
6: both are. Both are. Show VIP. Whatever, love. Salam. Guest to bahut hi nice hai aaj. Show ko 8 chand laga diya aapne. Aur

0: जिंदगी तो गाना बड़ा अच्छा गाया इन्होंने, एंड उम्मीद जी ने भी बहुत जबरदस्त गाया रुबाब, रुबाब को ना खैर सामने आके अभी तो गाएंगे, अब गाएंगे नहीं है शेरी भाई, क्या नहीं है भाई, देखिए आज मेरा चश्मा गुम हो चुका है, ठीक है, मैं एक चश्मा पुराना ले आया हूँ, एक में शीशा ही नहीं है एक आंख में, तो अब मैं बड़ी मुश्किलों से पढ़ रहा हूँ और आपका मैसेज, आपके मैसेज का बेइंतहा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सवाल मैं करता हूँ अपने सलीम भाई से, आपने कितनी शादियों कितनी तलाकें दी?
1: मैंने एक ही शादी की है,
0: एक ही शादी
1: और दूसरी चीज की नौबत ही नहीं आई।
0: क्या मतलब
1: तलाक का तो मेरी शादी बड़ी कामयाब हो।
0: अरे यार मर्द पता है क्या बोलते हैं, यार तू तो मर्द नहीं है भाई, तू तो किसी और औरत को देखता नहीं है, तू अपनी बीवी बीवी। अबे मैंने कहा भाई भाई जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी बीवी इतनी अच्छी है ना, वो क्या करना बाहर देखे, काम कम में बड़ा अपने सर पे टालना, पिटाई आपकी होगी, आंख आपका फूटेगा,
2: तो जैसे चश्मा आपका टूट गया।
0: क्या पता
2: देख लिया
0: अभी ये बात है ना, जनाब कहते हैं कि भाई आप बीबी के साथ बड़ा तरीके से बात करें, आप अगर आपने बीबी के साथ जरा भी कुछ गलत बात की
2: तो चश्मा टूट सकता है,
0: तो पता लगा कहीं से बेलन चला आ रहा है, कहीं से चिमटा चला आ रहा है, और अब एक दवा तो हद ही हो गई, पूरा गैस सिलेंडर उठा के मार दिया,
2: जोर से लगा था आपको
0: जब वो बीबी समझती कि मर्द जो है ना ये अनब्रेकेबल है, शॉक प्रूफ वाटर प्रूफ, ऐसी बात नहीं है, मर्द भी कुछ हर्ट होते हैं यार।

0: Russia.
1: There's no other station like 100.

0: हाड़ा भूड़ी वाला माहौल होता है उधर, उधर जो भी है मतलब कोई अच्छा गाने वाला भी है उसका भी नहीं पता, जो बहुत बुरा गाने वाला है उसका भी नहीं पता। बुरा गाने वाला गा रहा होता है, लोग हंस रहे होते हैं, वो खुश हो रहा होता है। मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी उनको गाने का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मगर वो गाएंगे जरूर और फिर नुक्ताचीनी भी करेंगे, आपने क्यों नहीं सुना, आपने मुझे मार्क्स क्यों दिए, आपने क्यों नहीं। ऐसा तो होता है, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन से पहले ग्रैंड स्लैम जाने से पहले एक साहब आए गाने वाले कंपटीशन में, मुझे कहते साहब मुझे आप जितवा देना प्लीज। मैंने कहा कि गली कूचों में खेल रहे हैं, जितवा दें आप, अच्छा गाएं तो जीत जाएंगे। तो अब जनाब जब गाना शुरू हुआ, वो अच्छा खासा गाते गाते उनकी तवज्जो तो हमारी तरफ थी ना, हम सुन रहे हैं, वो भूल गए, वो अपना जो अंतरा था उसको उठाने ही भूल गया, इधर से मैंने नंबर काट दिया। ठीक, और मेरे साथ एक शबाना कौशल भी बैठी हुई थी, वो बोलने लगी इसको तो कट कर दो। मैंने कहा नहीं, इतना गाया उनको वो नंबर तो देना। मगर एक दूसरा जो जो लड़का था जाफर, उसने आके कंप्लीट ए टू जेड से गाया, कहीं ना जुम ना फंबल किया, ना कहीं कोई शारी भूलिया, कुछ नहीं। तो वो जाहिर है उसको हमने नंबर दे दिया, और वो सिर्फ दो तीन नंबरों से वो हो गए। इसी तरह आप थे, आप किस नंबर पे आए?
1: फर्स्ट पोजीशन।
0: मगर ये देखे, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि सलीम गा रहा है और ये गा रहा है, मैं सिर्फ मार्क्स दे रहा होता हूँ, 1, 2, 3, 4 जो है ना कॉलम्स रखे हुए हैं कि आप वॉइस क्वालिटी क्या है, सुर में कितना गाता है, लय में कितना गाता है, परफॉर्मेंस कैसी है, प्रेजेंटेंस कैसी है। ठीक है, मैं वो देख रहा हूँ, जो मार्क्स वो कैलकुलेट करके आता हूँ, जो टॉप होता है उसको देख रहा हूँ, और मुझे याद ही नहीं है कि आपको मैंने टॉप दिया। मगर आप काबिल हैं, यू आर नॉलेज्ड। अभी ये जरूरत नहीं है कि हम गाने में ताने पट्टे ही मारे, तो बहुत लोग बैठे हुए ताने पट्टे मारे, इंडिया से अब आगे बढ़ सकते हैं, इंडिया में तो बच्चा भी ताने पट्टे मारता है। वो तो बहुत बहुत आगे, बहुत आगे, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत कहते हैं, हम उनके बहुत उभारी हैं, तो हमें वो चीजें हमारे लिए गाते हैं और हम यहाँ देखते खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है क्या, क्या मैं कोई गलत बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत छोटी मार्केट है।
2: हम चलते हैं अब।

0: there's no other station like 100 FM.
1: श्योर कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, ये दोनों ने बहुत अच्छा गाया है इनमें, स्पेशली सलीम खान ने तो चार चांद लगा दी महफिल में हारमोनियम बजा के, और हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, यानी कि मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ, वेरी बिग प्लेजेंट सरप्राइज टू मी, क्योंकि टैलेंट हंट में तो पता है क्या वो एक

0: क्या बात है, भाई क्या बात है, क्या बात है आपकी, आप मैं तो महफिल लूट लिया आज की भाई। मतलब ये सारे गाने वाले जो हम रोज चलाते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये कि ये तो बिल्कुल लाइव है ना।
1: हाँ बड़ा अच्छा
0: लाइव है, अच्छा है, बहुत अच्छा
1: आपने किया दिया। तो
0: मैंने कहा भाई हमने हम ले आए,
1: अच्छा
0: कितना अच्छा, मैं देखे Very good.
2: This is FM 100.
0: Achha janab.
3: Chali dekh.
4: Look around. Ready to make some babies.

0: humma daddy, humma humma usani, humma humma gujari woo, humma humma believe daddy.
1: अब सा और बा पकड़े सर
2: मतलब है
1: हाँ

0: अच्छा खबर नजरात, ये हमारे मेहमान ग्रामी ये तशरीफ ले जा रहे हैं, ये छोड़ के इनको जरा भी ध्यान नहीं आता कि न मेरे पास गाड़ी है, न मेरे पास सेलफोन है, न मेरे पास चश्मा है, वैसे थोड़े से तो खैर मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले उस वजह से कि आप कुछ अच्छे कलमात हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए बोलें।
1: सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे इतनी देर तक और लाइव म्यूजिक भी इंजॉय किया, इसके अलावा आपने मेरे ओरिजिनल सॉन्ग भी सुना। तो आज इस वजह से कि हमेशा अच्छे म्यूजिक को, अच्छे टैलेंट को, अच्छे आर्टिस्ट को हमेशा सपोर्ट करें और कोशिश किया करें कि ओरिजिनल अगर कोई पेश कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा जो है वो इनकरेज करें, क्योंकि ओरिजिनैलिटी ही आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो हमेशा अगर कोई आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल सॉन्ग देता है तो उसको कवर्स तो बहुत सारे सिंगर्स आपको मिल जाएंगे, वो बहुत मेहदी हसन साहब के करके उन्हीं के गाने सुन सुन के हम लोग जो है वो बड़े होते हैं, उन्हीं के हमारे पास सॉन्ग्स हमें पास है। तो हम हर वक्त अगर सिर्फ कवर्स गाएंगे तो हमारे पास न्यू टैलेंट नहीं आएगा। तो यह है कि थोड़ा सा ओरिजिनल को भी सपोर्ट किया करें और हमेशा अच्छे आर्ट को अप्रिशिएट किया करें। आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत जबरदस्त बात की है। आजकल तो वैसे ही आप कवर सॉन्ग करके पोस्ट नहीं कर सकते, आप फौरन पकड़े जाएंगे, आपको जुर्माना भी हो जाएगा, आपको जेल भी हो सकता है।
1: अच्छा ठीक है, नहीं वो पोस्ट हो जाता है लेकिन वो कवर्स के तौर पर ही होता है।
0: कवर्स जो है ना, मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत ही नुमाया मेंबर हूं और हमारा ये बिलीव है कि जितने लोगों की ये क्रिएशन है उसको दूसरे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना कह के इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको कुछ रॉयल्टी दे रहे, ना उनसे अप्रिसिएशन की बात भी नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये अब अच्छी बात हुई कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर हर जगह जो है ना ये कॉपीराइट का चक्कर आ गया है कि अगर आप कवर गाएंगे तो फिर आप फेस करेंगे। आपको चाहिए कि आप ओरिजिनल, अभी तो खैर आपने शो किया, प्रोग्राम किया है, वो बात नहीं है, मगर जो आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं ना, बी श्योर इट्स नॉट अ कवर सॉन्ग, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। मतलब दुनिया भी, मैं भी कहता हूँ क्यों यार आप पुरानी चीजों को बार बार बार बार, वो हो चुके हैं ना, उन्होंने अपने मैदान मार लिया, अपना जमीन भी सब कुछ फतेह कर ली, तो अब जब तक आप नए गाने नहीं करेंगे, लोगों को नहीं सुनाएंगे, उनको नहीं पता लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: वो इसी में जहां आप जैसा आपने फौरन क्या नूरजहां का गाना गाते सब उछल जाते हैं, ताली बजाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और आपने अगर ओरिजिनल गाया बहुत ही अच्छा गाया उसकी कोई वैल्यू नहीं,
1: जबकि सुनना नहीं होता ना, दिमाग जो है वो बहुत मुश्किल से कबूल करता है, हमारे यहाँ चेंज बहुत मुश्किल से कबूल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह आप सलीम साहब, आप तो उस्ताद निकले हमारे, आपने हारमोनियम पे क्या कमाल बजाया जनाब,
2: बहुत शुक्रिया नवाज़ शाह।
0: और इसी तरह आप तो वो सारे जितने भी वो अजूज मजूज हैं हम सब में अच्छा अच्छा गाते हो, और आज पता लगा कि आप में फनकारियां ही फनकारी सलाहियतें भी बहुत हैं।
2: बहुत शुक्रिया,
0: अच्छी बात है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ऑडियंस की तरफ से,
1: आपका बहुत शुक्रिया।
0: और सबसे पहले FM 100 पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, जिसमें हमारे जो जनरल मैनेजर हैं वो हैं मोहम्मद अली खान, और हमारे जो बॉस हैं वो इनाम साहब हैं, अमान साहब शायद, हाँ वो बॉस तो चेंज होते रहते हैं ना, अगर माफी चाहता हूँ अगर तो, ये सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे ये उन्होंने लेवरेज दी हुई है, मुझे मौका दिया हुआ कि मैं खुद भी काम करूं और अपने हम ख्याल लोगों को भी,
2: ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म
0: और उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और कभी कभी जो ये इंटरनेट काम नहीं करता उसको, जैसे ये टेक्स्ट मैसेज बहुत आते पहले, मगर अभी कुछ हालात ऐसे हैं चेंज हो गए, फोन भी नहीं आ रहे वगैरह, अलबत्ता चूंकि आज मेरा फोन नहीं है मेरे पास, फेसबुक पर मैं होता हूं, तो फेसबुक पर बेतहाशा लोग आते हैं दुनिया भर से, मतलब अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, पेरिस से वगैरह वगैरह, यहां तक होनालुलु से भी आए मैसेज مزاق نہیں کر رہا، وہ بھی ایک جگہ ہے دور. تو آپ سب لوگ بہت دل سے میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اینڈ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. اور چونکہ ہماری پالیسی ہے کہ ایک مہینے کے بعد ہی وہ سیم آرٹسٹ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ایک مہینے کے بعد آپ طے ہے کہ آپ دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने हो। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुशामदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और 3 बजे तक करेंगे खूब हल्लाते गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, QHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी।

0: भी
1: यानी कि समझ रहे हैं ना। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं मैं और आप देते हैं उसका जवाब। लेकिन आज मूड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जाहिर है पूछना पड़ेगा, तो जरूर पूछेंगे। मगर उससे पहले करेंगे आपको वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। तो पहला गाना एलो फड़ो।

वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है आपकी, आप यकीन मानी दिल पे लगी आपकी बात गफरान भाई। गो के टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है बड़ा मजे का। मूड स्विच कैसे करते हैं, क्या बटन दबाया जाए आपका कि जो है आपका मूड स्विच हो जाए। मतलब अगर मूड अच्छा नहीं है, बेकार सा है, और अगर आप उदास हैं, तो उसको स्विच खुशी में तब्दील कैसे किया जाए। हाँ जी ते हैं जी, ये जरा बताएं। हाय हाय हाय हाय गफरान भाई जी दे रहो, वो अपना स्विच बता रहे हैं कि नदीम भाई मैं इस तरह खुश हो जाता हूँ। वेरी गुड, और अल्लाह ताला को हमेशा खुश रखे। अच्छा जनाब, सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से भैया यूसुफ भाई पापोश वाले, वो आए हैं बहुत दिनों के बाद। यूसुफ भाई कहाँ गायब हैं यार आप, ऐसे गलत बात है यार, कुट्टी छुट्टी हो जाऊंगा मैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। खैर नहीं, कुट्टी वट्टी नहीं होंगे आपसे, आपसे मोहब्बत है भैया। और FM 100 की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी चाची अरूसा गुरबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई खिताब लाला, गुफरान भाई आपको भी, और मेरे वालिद साहब को भी उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई मेट्रोवेल से हैं और अमीन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इनमें कैसे हैं आप, और कह रहे हैं शो VIP ऑसम बिंदास, बोले तो जवाब। उमर बाप को उन्होंने सलाम कहा है, कैसे हैं, तबीयत टेंशन लेने का नहीं देने का, डिलीट कर दें, और वो फरमाइश मत किया करो यार आजकल। गुफरान भाई समझाएं यार, आजकल नहीं किया करे फरमाइश, लेकिन फिर भी हम आपकी ये वाली फरमाइश शायद पूरी कर दें, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी, हमारे सलीम मेमन भाई आ गए, न सलाम न दुआ, फौरन बस एक लतीफा। भाई सलीम भाई सलाम दुआ तो कर लिया करो यार, कह रहे हैं शोहर ने आपने क्या लिखा है यार, शोहर ने आपने बीवी से पूछा कि आपने मुझे में ऐसा क्या देखा। शोहर ने बीवी से पूछा क्या, शोहर से बीवी ने पूछा यार क्या यार लिखा क्या हुआ जरा सुनो, शोहर ने आपने बीवी से पूछा के, अब मैं क्या कहूं, तो शायद बीवी ने पूछा अपने शोहर से कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए। शोहर ने बीवी से पूछा था तो बीवी ने जवाब बोली जवाब दिया, मैंने एक बार आपने घर की छत से आपको बर्तन और कपड़े धोते हुए देखा, देख लिया था, बस इसीलिए शादी कर ली। सलीम भाई, सलीम मेमन साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी जौजा यानी कि आपकी बेगम साहिबा ने हमने क्या देखा था, फालूदा जरा दसो तो सही। आपके इसी चुटकुले को आपके ऊपर रख दिया मैंने। गुफरान भाई जब भी आपका प्रोग्राम बने बारबेक्यू का तो मुझे भी जरूर बुलाइएगा, वो कह रहे हैं आ जाए फौरन, प्रोग्राम बन गया बस गोश्त लेते हुए आइएगा वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कम से कम आप 5 किलो जो है गोश्त लेकर आइएगा, गाएगा और मटन की चांपे लाइएगा, और हो सके तो बाजार से थोड़ा सा चिकन विकन भी पकड़ लीजिएगा, कह रहे मसाला मैं लगा दूंगा, मसाले लगाने में वो माहिर है वैसे और आग मैं लगा दूंगा उसमें मैं माहिर हूं। तो सलीम मेमन साहब तैयार हो जाइए बस, आप जब आप बोलेंगे बारबेक्यू हो जाएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी, मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर आ गई है, कह रही सलाम कैसे हैं वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम का, और जी वालेकुम सलाम, यानी कि समझ रही हैं ना आप। आज समी भी आ गया भाई, जल्दी आ गया गफरान भाई, और इसने बहुत सारे मैसेज लिख दिए हैं, कोई बारबेक्यू वाला ना लिखा हो इसने कुछ, ये तो बारबेक्यू बनाने भी गफरान भाई जाएगा ससुराल। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप, सलाम टू गफरान भाई एंड ऑल लिसनर्स। अच्छा एक गाय की फरमाइश कर दी है उन्होंने,
और मेरे दोस्त के नाम, परसों मेरे दोस्त की शादी है। अरे क्या बात है भाई, यानी ये और फिर मुफ्ते आ गए। वलीमा शादी और मेहंदी, माइयों में भी अगर तुम गए तो फिर चार दिन के खाने पक्के है ना भाई। और नदीम भाई मेरे दोस्त आया है अभी, कह रहा था यार तुम्हारे लिए कान है, परसों मेरी बारात है, तुम्हें आतिशबाजी करनी है। बोलो उसमें तुम्हें मायर हो। और ढोल वालों के को लेकर आना है, और वो भी खुद बजा लेना। मैं बोला मैं खुद ढोल हर कोई बजा रहा है। बजा रहा होता है तुझे खुशी करने के लिए, ढोल वाले को लेकर आ जाऊंगा, हमारी अपनी तो अभी नहीं हो रही, आपको ये खुश कर देंगे। खैर हंसी मजाक अपनी जगह पर। वैसे आप ये बताएं, फिलहाल तो आप ससुराल वालों के साथ कर रहे हैं ऐसा, उनको ढोल बनाया हुआ है। अच्छा यार ये मोहब्बत भी हर बात हमसे शेयर करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इनका रिकॉर्ड लगाए। हम आपको अपना दोस्त समझते हैं सनी, इसीलिए आपके साथ जरा हंसी मजाक करते हैं, दिल पे मत लेना। और अगर गुफरान भाई कह रहे हैं कि अगर दिल पर ले लिया तो कोई बात नहीं। आज मेरा मूड खराब था, दोस्त की कॉल आई, होटल पर गया चाय पी, एक हवाई जहाज उड़ाया, कुछ बातें की, जब घर आया तो हमारी उनकी कॉल आ गई और मूड अच्छा हो गया। चलो आखिर में अच्छा तो हो गया ना मूड, ज्यादा जहाज नहीं उड़ाया करो, यानी कि समझ रहे ना। अभी इतने में सब दिल की बातें कर रहे, ये वाकई उदास है भाई। नदीम भाई अमान साहब को बोले, अरे सब नाम पता है भाई इसको। अच्छा भाई अमान साहब को बहुत सलाम कहा इन्होंने और कहा है कि अमान साहब लव यू। अरे मतीन भाई का नाम भी पता है भाई इसको। वाह भाई वाह, सबका नाम पता है, मोहम्मद अली भाई का नहीं पता, सबको उन्होंने सलाम कहा है और आपका सलाम जनाब हमने पहुंचा दिया है, यानी कि समझ रहे हैं ना। और आगे बढ़ते हैं जनाब, फातिमा नूर हमारी बहन आ गई हैं और कह रही है सलाम वालेकुम नदीम भाई। सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन शुमामीन, आपको भी रखे, यानी कि समझ रही है ना आप। मुश्क आ गई है जरा, करी वेलकम वेलकम सर, टॉपिक अच्छा है तो भरे आप बना स्विच बताओ, मूड कैसे चेंज होता तुम्हारा, कौन सी को गुदगुदी करे तो आपका मूड सही हो जाता है, हंसी आ जाती है। मैं जब खुश रहती हूं तो एक जिन आकर मेरा मूड स्विच ऑफ कर देता है, कहता उठो चुड़ैल गेट पर है, बस चुड़ैल का सुनकर मेरा मूड का बैंड बज जाता है। सोच रही हूं नदीम सर गेट को ब्लॉक करके नया लगवा लूं, क्या कहते हैं आप। अभी कौन सा गेट है, घर का गेट है, गली का गेट है, अपार्टमेंट का गेट है, मैंने की पता। और ये जिन कौन है पहले ये बताओ, चौकीदार को जिन तो नहीं कहती हूं। और आगे बढ़ते हैं, यहां गाने की जाने चलते हैं यार। तो एक और गाना यार बड़ा जबरदस्त सा, एलो फड़ो कितने गया ए एलो, क्या बात। ना ना

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको अपना बनाजा ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हसन रहीम का ये गाना था जना, यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, कॉन्सर्ट्स होते हैं इनके। सुने हो मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, और आज बात पूछते हैं, वजह खुशी पूछते हैं। आज इंसान का कभी कभी मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, मूड कभी बड़ा अच्छा होता है, खुश होता है इंसान, बहुत खुश होता है, ऐसे ही नहीं होता वजह होती है खुशी की, और इसी तरह मूड खराब भी होता है उसकी भी वजह होती है। तो आप ये बताएंगे कि आपका मूड स्विच कैसे होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना, मूड आपका। हाँ हाँ

0: Welcome back. मैसेजेस आप क्या नहीं किए चार्ल्स भाई, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। मेरा नाम है जदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुन रहे हो अभी भी कहते हैं यानी कि समझ रहे हैं ना। अरे भाई इस्लामी कह रहे हैं नदीम भाई आपसे और गुफरान भाई से मोहब्बत है यार, लव यू यार मेरे दोस्तों। अरे वाह सलीना गोम्स बहुत प्यारी है वैसे, उसने प्लास्टिक सर्जरी बहुत कराई है। मैं अच्छा हो गया वो ही सगा आपको, नाक उन्होंने सही कराई है, गालें सही कराई है। वैसे है वाकई में बहुत स्वीट सी है सलीना गोम्स। और आपको सलीना गोम्स क्यों याद आ गई मेरे बच्चे जरा बताओ। गुफरान भाई सामने बैठे हुए कह रहे कहां है, शीशे के उस तरफ दूसरे कमरे में, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा मैंने सॉन्ग प्ले किया है इसलिए आपको पसंद आए सॉन्ग। अच्छा और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, जरा गुफरान भाई सुनिएगा। मेहंदी की खुशबू से अभी तो खुशबू ही सुंदर है और और और और वे जनाब संजीव भी आ गई हैं, यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आफियत और सलामती की दुआएं, खुश आमदीद, कैसे मिजाज है, ओके टेक। प्यारी सी जरीन नूर उम्मीर बाब नौरीन के बेशुमार, नौरीन को बेशुमार दुआएं, के बेशुमार दुआएं, आप उर्दू गलत मत लिखा करें, नौरीन को बेशुमार दुआएं, प्यार कहने कह दिया। कह रही है सॉन्ग अच्छे सुना रहे हैं, हाय लजी अच्छे लग रहे हैं सॉन्ग, चलिए अच्छी बात है, मुझ पर छोड़ देंगे तो अच्छे ही लगेंगे। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो आ जाता है वो आए परेशान कर देता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अरे नौमान भैया कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी। नौमान साहब बल्दिया से और राधा गाना इनको अच्छा लगा भाई, वाह वाह वाह प्लेलिस्ट सुपर, अरे अच्छी लग रही है सबको प्लेलिस्ट, बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। मिर्जा साहब का मैसेज नहीं आया, अब उनको गाने बड़े पसंद आते हैं वैसे मिर्जा साहब को। और मेरी प्यारी सी बहन हलीमा आ गई, सलाम अख्तर भाई क्या हाल है, नाइस शो हमेशा की तरह, जीती रहो मुस्कुराती रहो, तुम्हारा मूड कैसे स्विच होता है, बेहतरी की तरफ का बोल रहा हूं अभी, और बेहतरी के अलावा भी मतलब एक कभी कभी ऐसा भी होता है गुफरान भाई कि मूड बहुत ही ओके टेक होता है इंसान का, तो अचानक यानी कि समझ रहे ना मूड अजीब ऑफ हो जाएगा, दिमाग पलट जाता है, खोपड़ी घूम जाती है, तो मतलब किसी भी तरह का आपका मूड स्विच कैसे होता है जरा ये बताइएगा। अच्छा ये जो पूछने की वजह है, वजह ये है कि आप लोग जब बताएंगे अपने तरीके कार कि किस किस वजह से आपका मूड स्विच होता है, आ रही है ना। हाँ द ग्रेट शेगी साहब का शो सुना ना आपने शेगी साहब जब भी जाते हैं अपनी यादें जरूर छोड़कर जाते हैं, तो बस उनको याद कर रहे थे हम, थे गुफरान भाई। गुफरान भाई यकीन माने मैं सोच नहीं रहा था ये आपने मेरा मूड स्विच कर दिया ये खुशबू से। अरे खुशबू से याद आई मुश्क, आगे और मैसेज नहीं आ रहे तो आगे बढ़ते हैं जनाब और आपके मैसेजेस की। जॉन एब कहां गया मैसेज, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब सलाम के बाद कह रहे हैं कि नूर जहां या सजाद अली की आवाज सुना दीजिएगा प्लीज, ऐन नवाजिश होगी, रैन नवाजिश करेंगे हम, तो सजाद साहब का तो कोई भी गाना चला देंगे हम।
1: किसको सुनाएंगे आवाज,
0: क्या
1: बोले आवाज सुना दें, किसको सुना,
0: वो उनको सुना दूं, खिताब गुल्लाला नसीम कुरैशी समी शेख इमरान रियाज अयूब आफरीदी और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम गाया, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफबी एरिया कराची। जी जी जी बोले बोले
1: बोले उनकी आवाज में गाने हैं, आवाज नहीं
0: है उनकी, आवाज उनकी नहीं है भाई, गाने हैं उनकी आवाज में। हाँ गाने गाने सुना दे, उन्होंने सॉन्ग ही लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ा नहीं था और कादर बख्श बलोच साहब करे नदीम भाई आपको और सब लिसनर्स को सलाम, कैसे हैं आप? आसिफ भाई क्लिफ्टन को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। आसिफ भाई कहाँ गायब है यार? आसिफ और बच्चा किधर हो? गुफरान भाई, क्या बारबेक्यू में जिन और भूत को भी बुलाया है क्या? नहीं नहीं भाई, 5 किलो गोश्त में आराम से फोड़ लेंगे हम तीनों। अय्यूब आफरीदी को भी बुलाएंगे और समी को भी बुलाएंगे हम, तो यानी कि 5 लोग हो गए। तो एक एक किलो गोश्त अगर खा लिया, यानी कि समझ आए ना ये भाई, आप लोग सब मेरी बड़ी गौर से बातें सुनते हैं, ये मजाहतन बात कर रहा हूँ। आधा पाव एक पाव से ज्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए ऐसे, तो हम ज्यादा लोग बुला लेंगे ना यार, यानी कि समझ आए ना आप। हाँ, और नदीम भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं तकरीबन 2010 से आपका शो सुन रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मोहम्मद नवाज साहब हैं जनाब फ्रॉम हजारा एबटाबाद मानसेरा से। अरे नवाज साहब बहुत खुशी हो रही है यार, वहाँ का मौसम तो बेहतर होगा ना, यहाँ तो यकीन माने बैंड बजा हुआ। इस टाइम कराची नेवल कॉलोनी यूसुफ गोट में हूँ। ओके, तो मतलब ये कराची के मौसम का मजा आप भी ले रहे हैं हमारे साथ साथ। ओके ठीक है, तो नवाज साहब हमारे पुफीजाद भाई हैं, उनका नाम भी नवाज है, दिखने में वो यकीन माने बंगाल के जादूगर लगते हैं। और इफ्तखार भाई आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हो? सदा सलामत रहो, फूलों की तरह महकते रहो, पत्थरों से प्यार था, नादान थे हम, गलती थी मेरी, उनको अपना समझा। हाय हाय हाय, अरे शुक्र है कि आपने पत्थरों को अपना समझा, लोगों ने तो पत्थरों को खुदा बना डाला था। बच गए आप। कमल कह रही हैं, कमल क्या कह रही हैं? कमल हलीमा और साइमा आपका शो सुन रही हैं। भाई कमल हलीमा और साइमा ट्रिपल सिस्टर्स, ये ट्रिपल दोस्त, कैसी हो? तीनों को हम गाना डेडिकेट करेंगे अभी। समी भाई आप भी मेरी तरह हो, मुफ्ता तोड़, तो ये मुफ्ता तोड़ खत्म कीजिए और गोश्त लेकर आ जाए। कह रहे भाई ये गुफरान भाई भी आए हैं, तो सलीम अमन भाई आपका मैसेज उनको बता रहा हूँ। कह रहे भाई क्या जिन भूतों को बुलाना है इतना गोश्त? अच्छा आप जितना भी गोश्त ले आए यार, आप 4 किलो ले आए, चले 5 किलो का था ना, तो 4 किलो गाय का गोश्त, बच्चिया का, साथ में तकरीबन 1 किलो चांप, 1 किलो चांप तो नहीं चाहिए ना, 1 किलो चांप की बगैर 5-6-7 सीखे बन जाएंगी, है ना, 5 बन जाएंगी, 5-5-25 नहीं बनेंगी, 25 बोटियां आएंगी, अगर एक सीख में 5 बोटियां भी लगाए हम तो 25 बोटियां चाहिए, तो 25 बोटियां कम से कम 1.5 से 1.75 किलो की होती हैं, यानी कि समझ रहे ना, आपको सब बता रहे हैं हम। सलीम भाई गौर से सुनते रहे आप, और
1: पराठे भी हो तो अच्छी
0: बात है, पराठे तो यार वो इतने बोझ नहीं डालते ना, गोश्त ले आए सर, मसाले वसाले आप लगा देंगे, आग हम लगा देंगे, और समी को भी बुला लेंगे, समी पराठे ले आएगा, अय्यूब लाला चटनी ले आएंगे, और भी 2-4 को बुलाएंगे हम, ये काशिफ भाई भी होंगे हमारे साथ बारबेक्यू में, काशिफ भाई जो है वो आग में फूके मारेंगे ताकि आग दहकती रहे। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां पर आग लगती है ना वहां फूके मार रहे होते हैं फुल टाइम। आपकी जिंदगी भी बहुत सारे होंगे, यकीन मानिए, कोई पुफी होगी, उसकी बेटी होगी या कोई नंद होगी, उसका काम ये नहीं होगा कि वो कोई बात करे, जैसे ही नानी ने बात की है ना तो नानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये फूके मारना होता है और नानी के ही कान में फूके मार रही होती हैं। हाँ, टारगेट बनाए होते हैं उन्होंने फुल टाइम भाई। तो ये हमारे मुंह नहीं गिरेगा आपका आटा टाली। तो काशी भाई आ गए हैं, और भाई फुल टाइम बारबेक्यू का जो है हमारे सलीम मेमन साहब ने हमारा मूड बना दिया है, तो सलीम मेमन साहब बस अब गोश्त का इंतजार है आपके, आपने जितने भी शॉपर जमा किए सब लेकर आ जाओ। छोड़ना मत। और जी
1: शॉपर नहीं,
0: सुजुकी यार, शॉपर सही है यार, रिक्शे में आ जाएंगे,
1: नहीं नहीं उन्होंने जमा
0: टोटल, अच्छा इन्होंने सुजुकी जमा की है ना, ये तो भाई अपने ससुराल से 2 फ्रिज भी ले आए हैं, वो फ्रिज कम पड़े होंगे सलीम अहमद साहब,
1: हाँ
0: उन्होंने बोला हमने क्या करना है, फ्रिज जरा दे ईद के बाद ले लीजिएगा, ईद के दो महीने के बाद। काशिप भाई यकीन मानिए कि ईद पे कुर्बानी का जो गोश फ्रिज में जमा होता है, सभी कह रहे सुजुकी सही है। काशी भाई को मैं बात बता रहा हूँ, हमारे काशी भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, बस इनको एक आदत होगी हर वक्त मुंह से तार छीलते रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि काशिप जहां बेटा 10 रोटियां ले आओ, अच्छा प्लास पकड़ाइएगा। पैसों की जगह मुंह से प्लास निकलना होता है। इस तरह होता है। चलो यार इसी बात पर अब हम जाते हैं यार। हाँ अरे नहीं उड़ाते हैं उनके मुंह यार, ये नहीं बताते काशिप भाई हमारे दोस्त है यार। तो जनाब अभी आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक के जाने पर, ये ट्रैक हम ट्रिपल सिस्टर को डेडिकेट करेंगे, कवल को, हलीमा को, सायमा को, और उनके साथ साथ हमारी प्यारी सी बहना इकरा है जो बच्चा, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको डेडिकेट करेंगे। अल्लाह फड़ो।

वेलकम बैक सुनियो, मैसेजेस कर रहे हैं आपकी चॉइस पे, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड करें 3636 पर। अमीन कह रहे हैं मुश्की सिस्टर, दादा दादी की परफ्यूम चुप चुप कर लगाना बुरी बात है, इन्हें भाई आप समझाएं इसको, दादा दादी की का परफ्यूम लगा कर ही मुश्की बन गई हैं। हाय वाह वाह वाह वाह, स्विच वेरी गुड गर्लफ्रेंड भाई, स्विच कर दें। और जनाब हमारे ये कौन साहब हैं, अर्जन प्यारी सी बहना है हमारी जरीन नूर, वो कह रही कोई भी अच्छा सा ट्रैक संजू को डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे, और आपके इसी मैसेज के साथ संजू का मैसेज भी आ गया है। और क्या कह रही है संजू, हाँ मेरा मूड तो हमेशा सारा दिन अच्छा रहता है, अच्छी बात है, बस स्विच ऑन और ऑफ का बटन किसके हाथ में है ये नहीं बता सकती, मेरी खोपड़ी अक्सर घूमने की वजह से एक अजीम शख्सियत है उसकी वजह है। वाह जी वाह, छुपा कर मैसेज करते, अरे भाई बताना चाहिए मूड बेहतर कैसे होता है। वाह वाह वाह वाह, दुबई नजर आ रहा है मुझे, गुफरान भाई बुर्ज खलीफा मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर हैं जिनका नाम है फरहीन, जो कि दुबई में होती हैं। फरहीन कहाँ हूँ आजकल, सुन ही नहीं रही हो यार, ये तो गलत बात है यार जी, लेकिन यार दुबई में लोग बड़े मसरूफ होते हैं, तो हो सकता है फरहीन साहबा जो है मसरूफ हो वहां पर, तो हम फरहीन को गाना डेडिकेट करेंगे। मुझे जो है ये आपने एक लतीफा याद आ गया मुझे, लेकिन मैं भूल भी गया हूं। अच्छा, ये गुफरान के लिए दुआएं, उनके चुटकुले प्रोग्राम में प्रोग्राम का मजा दोबारा कर देते हैं। अच्छा जी, आपका मूड माशाल्लाह से बहुत खुशी लिए हुए है, इसको स्विच ऑफ कर दूं, कीजिए, लेकिन फिलहाल मेरे मूड का मॉड जो है MODE मोड वो गुफरान के हाथ में, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो चेंज करते रहेंगे। हाँ क्या बात है, हाँ नींद में हूं इसलिए अल्फाज लिखने में छूट जाते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह, नींद में क्यों है, अच्छा एक नींद होती है, एक खुमारी होती है, खुमार में जो है इंसान जो होता है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के असूल बताइएगा। गुफरान भाई का मूड बहुत अच्छा है। अरे भाई जान सुने हो, स्वीट सुने हो, को मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूलो, अभी कहां गायब हो इरफान मेमन, ऑल मेमन कजन्स सलीम मेमन को एक ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा, और सारी गायब कजन्स भी आपका शो सुन रही है। अरे वाकई में हम ऐसे तो मानेंगे नहीं आपकी बात, जब तक हमारी टीचर हमारी बहनें हमें फोन मैसेज नहीं करेंगे, 3636 पर मैसेज आएगा तो हम गाना चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे। गुफरान भाई को अस्सलाम वालेकुम, इरफान मेमन कह रहे हैं, इरफान मेमन भाई कितने गायब हो यार, क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फुल टाइम टोका और छुरी वुरी पकड़कर आप घूम रहे थे, इसीलिए ईद पर भी नहीं आए, मसरूफ थे ना भाई। हाँ भाई दस्ती चाहिए, पुट चाहिए, क्या चाहिए भाई, चांप गुर्दे का पूरी चाहिए भैया, कलेजी कौन लेके जाएगा, सीरी चाहिए, पाई चाहिए, इरफान भाई जरा सही बताइएगा। इसीलिए नहीं मसरूफ से। सनी कहते हैं कि मेरा मैसेज गुफरान भाई भी सुन रहे हैं, अबे पढ़ रहे होंगे। हाँ सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ओके ओके सही कहा। नदीम भाई जब भी बुलाएं एक दिन पहले बता देना, ताकि मैं सुबह से कुछ ना खाऊं और पूरा दिन
यानी कि समझ रहे ना, समझ रहे हैं। और कह रहे सुजुकी होनी चाहिए भाई फुल टाइम। तो इरफान सलीम मेमन साहब, हम लोगों ने तैयारी पकड़ ली है, यानी कि ये कम से कम आधा किलो या पौन किलो गोश्त तो खा ही लेगा, एक ही बंदा इतना खा लेगा। तो यार ये कम ना पड़ जाए, ये पांच किलो जो है मैंने बचिया का गोश्त खाया बगैर हड्डी के, ये जहन में रखिएगा। और चांपे डेढ़ किलो चांप, मुर्गी का गोश्त जो है वो आप दो किलो ले आइएगा, कम है। नहीं नहीं हम खाएंगे ना, आप नहीं खाएंगे? काशी भाई कह रहे नहीं मुर्गी का नहीं, तो आप नहीं खाइएगा भाई, हम खाएंगे। मटन भी खाएंगे, बीफ भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे। आपको चिकन का पता नहीं है? चूजा खाया कभी आपने? काशी भाई कह रहे चूजा नहीं खाया मैंने। चूजे का गोश्त कभी किसी ने पिए? सूप पिए किसी? गुफरान भाई हंस रहे। खैर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास भरते हो सर्दियों की शामों में। और मैसेज इसकी जान है भरते हैं सलीम मेमन ना का मैसेज आ गया। सलीम मेमन भाई आज भागने नहीं है, मैसेज पर मैसेज आने चाहिए। अरे भाई लोगों, कोल्ड ड्रिंक मिठाई तो आप भूल ही गए, और इसकी फिक्र ना करें, मैंने आपको बताया ना पराठे लेकर आएगा सनी। कोल्ड ड्रिंक जो है हम काची भाई से मंगवा लेंगे। और अभी भी एक बंदा बाकी है, अयूब आफरीदी, उसको भी अभी हमने काम कहना है, और कुछ बाकी है तो वो भी बता दें। सलीम मेमन ऐसे लग रहा है आपका बीपी लो होता है यार। हाँ एलर्जी उमर रुबाब भी आ गई हैं और कह रही है सलाम। उमर रुबाब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, और आप सबसे भी गुजारिश है कि उमर रुबाब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी और मुश्किलात को जो है वो खत्म फरमा दे। आमीन शुमामीन। अच्छा अभी संजू ने एक बात लिखी थी, रुक जाओ, और उस पर मैं गाने की जानिब जाऊंगा। इन्होंने लिखा था कि दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के असूल क्या है। अगर दिल इशारे करना सीख जाए ना, तो यार यकीन मानिए कि दस्तक का भी पता चलता है। अब दिल इशारे कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं ऐसे।

0: दिल के इशारे लगने लगे हैं प्यारे, आंखों में तू झांक ले। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। अमीन कह रहे हैं सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। वाह वाह ओएसटी की इन्होंने फरमाइश की है। सलीम भाई, सलीम अमन भाई के लिए तो 5 किलो गोश्त तो चुटकुले की तरह है, चुटकियों में भाई। बिल्कुल सलीम मेमन भाई, 5 किलो तो सिर्फ भाई वो बीफ का गोश्त है, 1.5 किलो या 2 किलो लगा लीजिए चाहते हैं, 5 और 6 7 हो गए, और 2 किलो चिकन, यानी कि टोटल 9 किलो गोश्त है। अमीन साहब बाकी 4 किलो आप लाएंगे क्या? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको मैसेज कर दिया था। अनम मेमन भाई आज सब्जी पकाई है और कजन्स को एक सॉन्ग। अरे हमारी प्यारी सी बहन अनम मेमन आ गई हैं और कह रही भाई सही कहा, कसाई बने थे। अच्छा मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ भाई, सलीम मेमन भाई हमारी बहनें हमारे साथ हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना। और पाए मगज खाने में बिजी थे। वाह वाह वाह वाह वा, भाई क्या बात है इरफान मेमन भाई, सही जा रहे हैं आप। आप सब लोग जो दुआ किया खुदा मुश्किल आसान फरमाए, आज आसान मालूम। और क्या लिखा हुआ है, ईद गजीर मुबारक आप सब लोगों को। खैर मुबारक जनाब, और तमाम सुनने वालों को भी मुबारक, यानी कि समझ रहे हैं ना। ये है हमारी प्यारी सी उम्मीद रुबा। दिल के तेरे इशारे लगने लगे हैं प्यारे, आंखों में तो झांक ले। ताहा जी का ये ट्रैक था जो हमने चलाया था, और मिर्जा साहब आ गए ने जनाब गुजर खान, तो कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात। और कहते हैं कि नदीम भाई जब आप इस सीट पर बैठते हैं तो आपका चेहरा रोशन और गुलाब की तरह खूबसूरत हो जाता है और हमारे दिल शादो आबाद हो जाते हैं। जीते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप अपनी तमाम परेशानियां और टेंशन बाहर छोड़कर इस सीट पर बैठते हैं, हमारे लिए आपको दिल से लव यू, लव यू 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10। और कहते हैं, और मेरी FM 100 कराची से गुजारिश है कि मोहम्मद अली भाई की आवाज में हम रमजान ट्रांसमिशन सुनते हैं, उनकी आवाज बहुत यूनिक है, हफ्ते में एक इस्लामिक शो मोहम्मद अली भाई को दिया जाए, हम उनको सुनना चाहते हैं। ले जी मोहम्मद अली भाई को शो दिया जाए। मैं हंस इस वजह से रहा हूं कि भाई वही तो शोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए क्या मसला है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। लेकिन आपका ये पैगाम जो है वो अली भाई तक हम जरूर पहुंचाएंगे और अली भाई को बताएंगे। अली भाई, और नो डाउट यार उनकी आवाज, अली भाई की आवाज आप सुन रहे हैं
1: FM 100।
0: खुदा के लिए गुफरान भाई। अच्छा जी, मेरे मैसेज किधर जा रहे हैं, आपके मैसेज इधर ही आ रहे हैं जनाब। हाँ हमारी जरा तवज्जो एमी उफरान भाई ने बांटी हुई है। इरफान मेमन कह रहे हैं 2 दिन कुर्बानी थी सोने, वो तो पता था मुझे, गायब कजन्स में मुझसे पहले मैसेज कर दिया था, मेरे तक यानी कि हमारे यहां तक देर से पहुंचा। उम्र बाप सिस्टर्स के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। आपकी टीचर तो गोश्त ही नहीं खाती, वो भी सुन रही है,
1: करो आला है टीचर।
0: अच्छा वो अभी भी अनम ने बताया मुझे कि वो सब्जी बनाई हुई है, अच्छी बात है।
1: सब्जी खाते हैं आप? कौन सी सब्जी आपको बहुत पसंद है ये मेरे को बताओ। वो सब्जी नहीं है।
0: अरे आखिरकार खुशबू का मैसेज आ ही गया हमारी मुश्कर, कहती हैं कि अच्छा मैसेज मैंने किए हुए हैं, आप पढ़ें तो सही। सलाम भी लिखा है। हाँ अच्छा, एक 50-50 प्रोग्राम आता था तो उसमें एक सब्जी का जिक्र होता था और वो तकिया कलाम बन गया था उस जमाने में, उठाया गोल कद्दू और सर पे मारा धैं हैं। यानी कि काशी भाई को कद्दू बड़ा पसंद है। अच्छा कद्दू का वर्ड जो है वो अक्सर स्लैंग उर्दू में भी यूज किया जाता है। आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं कद्दू, झूठ मतलब यानी कि झूठ बोल रहे हो। कद्दू। हाँ कद्दू ज्यादातर खवातीन बोलती थी, लड़कियां आई छोड़ो कद्दू। और अरे हाँ, मुश्क के मैसेजेस पढ़ लें भाई। इतने बड़े मैसेज कह रही है, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, कल शो को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, बनावे मैसेज बनाम बेनाम बेनाम बनाम लिखा भाई आप। मुश्क संजू से सीखो उर्दू, बेनाम और बनाम में फर्क होता है। हाँ कल हुआ था, अच्छा कल जो गुजर गया सो गुजर गया बच्चा। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम अक्सर जो है ना पास्ट को पकड़ के बैठे होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप पास्ट को पकड़ के बैठते हैं। पास्ट को काशिफ भाई, हमारे काशिफ भाई इंजीनियर हैं और टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो इस वक्त शीशे के उस तरफ बैठे हुए हैं और मैं उनको बता रहा हूँ, सुन रहे हैं मुझे। तो काशिफ भाई पास्ट यानी कि माजी को साथ लेकर मत चला करो, अब जो कल गुजर गया वो गुजर गया, आगे बढ़ो। काशिफ भाई कह रहे मैं आगे बढ़ूंगा, मरीम भाई हिम्मत बढ़ रही है, वो इशारों से पता चल रहा है मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या कह रही हैं, जब किसी का वक्त आपसे ज्यादा कीमती हो जाए फिर उसे बार बार तंग करके खुद ही उसके घर पहुंच जाए, फिर वो जाने और उसके घर वाले जाने। यार वैसे बात थोड़ी अच्छी की है, अपने घर का पता भेजो, फौरन भेजो ताकि ना पहुंच जाओ, फिर तुम जा रहे हो तुम्हारे घर वाले जाने। गुड है गुड है। अच्छा जी आरी मिलेगी, रात काटनी है बेटे, आरी के बगैर भी मैं बता सकता हूँ कैसे कटेगी, दांतों से काट लो। लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, मासूमाना सवाल है, उसका जवाब बता दिया मैंने। ए मुश्क दांतों से काट लिया करो, आरी नहीं मिले तो। अच्छा और भी मुश्क के मैसेजेस हैं, उन पर जो है हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी और आगे बढ़ते हैं। और आखो हम एक गाना सुना थे, और कौन सा गाना सुनाए, हाँ ये वाला गाना सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा। अरे बल्कि हाँ पहले यही वाला सुनाएंगे, नए नए गाने चल रहे हैं ना, तो एक बहुत ही जबरदस्त। काशी भाई आप देख रहे हैं, हाँ काशी भाई सुन रहे हैं, तो काशी भाई ये जो गाना है ये आजकल ट्रेंड में बहुत है, आप इस पर अपनी टिकटॉक भी बना सकते हैं। तो काशी भाई ये गाना जो है हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद जनाब एक और गाना भी चलेगा, गुफरान भाई ने बता दिया, और वो गाना चलेगा हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने जो है वो डेडिकेशन के लिए कहा था, तो जरीन नूर की तरफ से हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे संजू को। तो पहला गाना जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे काशी भाई को, और दूसरा गाना जो है वो डेडिकेट हो रहा है जनाब संजू को। तो कहां गया पहला गाना, ये रहा, तो पहला गाना एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है हम सबको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने हो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और 3 बजे तक यह हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। एक सवाल मैंने फ्लोट किया है, उस सवाल का जवाब देना है। हकीकत में तो अभी तक किसी ने उसका दुरुस्त जवाब या सच्चा जवाब नहीं दिया कि मूड को स्विच जो है वो आप क्या करना जानते हैं। अच्छा, कभी कभी इत्तफाक से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, आपका मूड बेहद खराब है तो कोई ना कोई शख्सियत ऐसी आ गई या कोई गाना सुन लिया या मेरा

सुन लिया आपने या अयाज का शो सुन लिया तो आपका जो खराब मूड था वो स्विच हो गया और थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप बेहद खुश हैं, मतलब मूड बड़ा अच्छा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई वजह हो मूड अच्छे होने की। एक जहनी तौर पर जो इंसान थोड़ा सा मुतमईन होता है या थोड़ा सा टेंशन फ्री होता है या अपनी सोचों को साइड किया होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। देखिए, आजकल के दौर में टेंशन है बहुत है, सब जानते हैं बहुत टेंशन है। सही है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। किसी को रोजगार की टेंशन है, किसी का रोजगार है तो कम आमदनी की टेंशन है, किसी को महंगाई की टेंशन है, ज्यादातर लोगों को बिजली की टेंशन है कि बिल अदा करना है। यार, घर के बल्ब गिन रहे होते हैं, पंखे गिन रहे होते हैं, भाई दो पंखे से ज्यादा ना चले। जिनके यहां एसी नहीं है, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं। इसी तरीके से यार क्या उनको टेंशन ये होती है कि भाई यूनिट ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह से जो कैपेसिटी चार्जेस जो है सबसे ज्यादा जो है जिंदगी अजाब इंसान की कैपेसिटी चार्जेस ने की हुई है। तो परेशानी इंसान के जहन में बहुत सारी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोस्तों के पास चले जाते हैं, जैसे समी चला जाता है चाय पीने के लिए, चला गया, मूड आपका अच्छा नहीं है, आप चले गए, इधर उधर की बातें सुनी, इंसान का जहन इधर उधर लग जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मूड बेहतर हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। आपकी पसंदीदा कोई बात हो, पसंदीदा शख्सियत हो, तो इसको कहते हैं बदलना या स्विच होना मूड का। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बड़े खुशगवार मूड में होते हैं और आपकी नापसंदीदा शख्सियत आपके सामने आ जाती है, तो उसको देखते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। ओए होए होए, अबे कौन आ गया यार। अब उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसकी लंबी लंबी फेंकना जो है आपको नहीं पसंद होगा, उसका झूठ बोलना आपको नहीं पसंद होगा, या उसकी मुनाफिकत आपको पसंद नहीं होगी, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी शख्सियत भी सामने आ जाती है जिसको देखकर आपका मूड अगर खराब भी हो तो आप देखकर आपका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। चलो यार, ये कोई अच्छी अच्छी बातें कर लेगा, कोई चुटकुले सुना देगा, जैसे हमारे सलीम मेमन सुनाते हैं, जब से गोश्त का गाय है उनके चुटकुले बंद हो चुके हैं। वो फंस गए हैं बारबेक्यू का। वो अभी तक उनकी समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। खैर जी, आपके मैसेज का इंतजार करूंगा मैं, सलीम मेमन, यानी कि समझ रहे हैं ना। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब, और थोड़ी सी चर्चा मैंने कर दी है, अब अगर आप चाहें तो मूड स्विचिंग का हवाले से कुछ कह सकते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, एंड तक जाके प्ले करते हैं नदीम भाई। भाई गुफरान भाई, गुफरान भाई आप सुन ही नहीं रहे यार, उन्होंने मेहंदी की खुशबू सुनी है यार, समी भाई ने कह रहे हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं और आप एंड में चलाते हैं, ये गुफरान भाई को गए हैं यार आप, ये गुफरान भाई की वजह से हो रहा है सब। अगर आप कहो तो मैं रिक्वेस्ट करना छोड़ दूंगा। सीरीज, अच्छा आपने सीरियस को लिखा हुआ है सीरीज। समी आपने लिखा हुआ है सीरीज। समी इतने सीरियस क्यों हो गए हो तुम? क्या हुआ, हमारी होने वाली भाभी से लड़ाई बड़ाई तो नहीं हो गई? बातें बुरी लग रही है यार, इस रिक्वेस्ट पूरी करते, इसने खुशबू सूंघनी है मेहंदी की। समी ने सूंघ ले खुद ही, कह रहे बाजार से मेहंदी ले आओ भाई, अपने बाएं हाथ पे लगाना, दाएं हाथ पे नहीं लगाना, और फिर खुशबू सूंघते रहो मेहंदी की खुशबू से। हारून का गाना है यार, समी की फरमाइश है यार, चला दो। समी पराठे लेकर आओगे जब वो गोश्त लेकर आएगा? तो मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में बताओ। समी बताओ, पराठे लेकर आओगे? वो कह रहा है कि जब पराठे लेकर आओगे, कंफर्म करोगे तो ही मैं गाना चलाऊंगा। अच्छा, कह रहा है मेहंदी तो हमारी उनके हाथ पे अच्छी लगती है, जब वो हाथ पड़ेगा तब भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, पराठे लेकर आऊंगा सुजुकी में, यानी सुजुकी में तो गोश्त आएगा।

0: थैली में लेकर आना। कितने पराठे चाहिए होंगे गुफरान भाई? 10, 20, 30, 40, 30। 30 पराठे बहुत है। 40, 80, क्या क्या हो गया भाई? क्या 50? 10 है, सिर्फ 10? नहीं यार, 10 तो फिर रोटियां भी चाहिए, चपाती भी चाहिए होंगी ना फिर तो। वो कह रहे हैं कि भाई 10 पराठे और 15 चपाती, आप ओके करें। फुल टाइम बारबेक्यू का सीन बन रहा है उफरान भाई। बस सलीम भाई का ओके करने की देर है और एफएम की छत पर ही करेंगे। अच्छा जी गुफरान भाई, आपने ससुराल वालों को भी ऐड कर लिया? ससुराल वालों ने इनको ऐड किया, वह इन्होंने नहीं किया। आप भी ससुराल वालों में ऐड होंगे। और भाई इरफान भाई, इतने सारे मैसेज, ओए होए। और क्या कह रहे हैं कि आपकी टीचर का तो हो गया था मैसेज। आलू पालक, आलू पालक हो और अम्मी के हाथ की गरम रोटियां तो मजा आ जाता है यार। वैसे वाकई ये बात तो है। और सुने हो, सॉन्ग प्ले होगा लेकिन जो आपने कहा वो नहीं करेंगे हम, अपनी मर्जी से करेंगे। सज्जाद अली का ही ट्रैक प्ले होगा। अच्छा जी, एक उन्होंने लतीफा भेजा है कि इंसानों के भी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। अगर अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पांव पर खड़ा होता। अच्छा जी, मुझे न्यू कार लेना है, ये टेंशन है भाई। आप ऐसी दुल्हन तलाश करें जो कार में आए और वो कार आपके पास ही रहे। किसी बहाने शादी पर तो मानो, मेरी तमाम बहनें भी यही कहती हैं जी। भाई अभी जो है ना गुफरान भाई स्टूडियो में आए हैं, उन्होंने माइक पर हाथ रखा हुआ है। समी भाई मोबाइल कान से हटाकर नाक पे लगाएं और वो पूछ रहे हैं कि खुशबू आई मेहंदी की है ना? अब ये आप समी भाई से खुद पूछिए। और कह रहे हैं कि सुने हो, आप तो मैन स्विच हो, ऑन होते हो हैप्पी मूड हो जाता है। सो स्वीट, थैंक यू इरफान भाई। और सलीम अमन, स्टिक में स्टिक्स मैं लेकर आऊंगा। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए यार। इरफान मेमन ने कह दिया है कि सीखें जो है वो ये लेकर आएंगे, सीखें लेकर आनी है और साथ में वो क्या उसको कहते हैं, आग जलाने की अंगीठी, अंगीठी। हाँ ये भी सलीम मेमन आपकी जानिब से हो गया, ये सलीम मेमन की जानिब से हो गया भाई। तमाम लवाजमात आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। बस गोश लाने वाले ने ओके करना है। और सलीम मेमन, मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। वाह जबरदस्त, इसका मतलब है मोहम्मद अली भाई एफएम 100 के आला हकाम में से हैं। बिल्कुल जनाब, वो एफएम 100 के अब्बू हैं। तमाम आरजेस के अब्बू हैं। और अच्छा जी, थैंक्स कहा है जरीन नूर ने, मेरी बहन कह रही है बहुत बहुत शुक्रिया गाना चलाने के लिए। अमीन कह रहे हैं कि सिस्टर मुश्क आपको आरी हथौड़ी मिल जाएगी, आपका भाई कारपेंटर है, क्या बात है। ये बताओ मुश्क सिस्टर से कोई कोई ऊंट को जिबा करेंगी? डोंट माइंड सिस्टर मुश्क, सवालों के जवाब दे दिया करो। इतने प्यार से सब लोग आपको पुकार रहे होते हैं और कह रहे मेरी प्यारी सी बहन को बुरा तो नहीं लगा, ज्यादा बता दो मुश्क। अच्छा जी गुफरान सुने हो, गुफरान भाई को खाना गोश फ्रीजर में पत्थर की तरह जम गया है, कम से कम 2 या 3 महीने लगेंगे निकालने में। सलीम मेमन कह रहे हैं। सलीम मेमन भाई कोई मसला नहीं है, इसका बेहतरीन हल आपको बताता हूं। आप कम से कम 5 घंटे उस फ्रिज को बंद रखें। उसके बाद छठे घंटे में वो गोश बाहर निकल आएगा आराम से आसानी के साथ, और जितना गोश हमें चाहिए हम सबको, तो उतना गोश निकाल लीजिए आपने, उसके बाद दोबारा फ्रीजर को ऑन कर लीजिए। मेरे भैया कोई बहाना नहीं चलेगा। और आप सब लोग जो दुआ किया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हमारी प्यारी सी उम्मीद रुबाब का मैसेज आ गया। हाँ सलीम मेमन भाई, आपके मैसेज का हमने दे दिया है जवाब, और आपको अब बताना है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। यार एक अंग्रेजी गाना सुनने का दिल कर रहा है, मतलब फरंगी टाइप का, तो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। हमारे एक लिसनर बड़े प्यारे से इस्माइल भाई नुमाइश से आया करते थे, वो अरबिक गाने की फरमाइश जरूर करते थे, तो हम आज सुने या ना सुने उनको याद करते हुए ये ट्रैक उनको और उनकी वाइफ को डेडिकेट करते हैं। एलो फड़ो
1: Ready to make some babies with the ladies. Left side, fading.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। अच्छा भाई, मैंने इतने सारे नाम पुकारे थे, समी के अलावा कोई नहीं आया। सारे खामोशी के साथ शायद सुन रहे हैं, संजू शायद सो गई, उस वक्त भी इनको नींद आ रही थी। मुश्क जो है उसके मैसेज जो है वो पूरे नहीं पढ़े थे, तो वो भी पढ़ लेते हैं भाई। और कहती हैं, नदीम सर बर्तन धोने के लिए जब बाजू पीछे करती हूं तो एकदम गुंडों वाली फीलिंग आ जाती है। ममा की आवाज आती है, बस कर दे बाकी मैं धो लूंगी, बर्तन मत गिराना। इसको दहशत कहते हैं। अरे गुड्डा गुड्डा भाई, सोने का शेड्यूल ऐसा हो रखा है कि सुबह मुर्गे को मैं उठा दूं। क्या बात है सही नदीम सर, ये सब आपके शो का जादू है। एक आंटी कहती है, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। किसी साहब की बेगम का बीपी लो हो रहा था, उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुना दी, अब जाके हाई हुआ है।

और टॉपिक उनको अच्छा लग रहा है। मैं जब भी खुश रहती हूँ, ये तो हो गया था मैसेज भाई, भाई मुश्क तुम्हारे सारे मैसेज हो गए और कह रही है मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ तो क्या मतलब है, बाजू वाजू तो नहीं चढ़ा लिया तुमने। तानिया हसन जी भी आ गई है और तमाम सुनने वालों को उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है उनका बाकी मैसेज जो है मैं देर से पढ़ता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ूंगा। तानिया जी ये भी साथ रहिएगा। और आई एम नॉट गायब, समी कह रहे मैं यही हूँ। और कह रहे हैं रीमिक्स वर्जन नहीं प्ले करना था नदीम भाई, मैंने नहीं किया, ये गुफरान भाई ने कहा। ये रीमिक्स वर्जन था क्या? वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी शादी अभी हो रही है ना, जो पुराना गाना था तो नया वाला वर्जन जो है वो वाला सुना है। सही है, उन्होंने फिर भी थैंक्स कहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर जनाब हम जाएंगे एक और ट्रैक के जाने पर। ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे मेरी तमाम प्यारी सी मेमन कजन बहन, जिनमें दुआ मेमन है, अनम मेमन है, महानूर मेमन है, सायरा मेमन है, और हमारे इरफान मेमन है, और हमारे सलीम मेमन है। तो इन तमाम को तो डेडिकेट ये ट्रैक होगा। उसके साथ साथ हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी सज्जाद भाई की फरमाइश की थी, तो एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुने आप सबको जे अठो कदी रावी लंग जाए हाय हाय हयाती पंजाबी बन जाए। अच्छा भाई हमारे कामरान अयूब साहब आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपको और सबको सलाम। मेरा मूड आप शो सुनकर आपका शो सुनकर ठीक हो जाता है भाई। आपकी दुआ इतनी जल्दी हो गई, मैंने आपको कहा था मेरे लिए दुआ करो कि मेरी शादी हो जाए तो एक महीने बाद मेरी शादी। अरे क्या बात है कामरान भाई, मुबारक हो भाई, ये अल्लाह के काम होते हैं कामरान साहब, जो आपके नसीब में लिखी हुई है वो आ गई। अब ये जो है ये जो आई है

ये आपके साथ सारी जिंदगी रहेगी, यानी कि समझ रहे ना आप। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी प्यारी सी बहन अनीसा है ये। अरे अनीसा, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे भाई। बहनों के लिए अलग से दुआ है और खुसूसी तौर पर लड़कियों के लिए बेतहाशा दुआएं, दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के बच्चियों के नसीब जो है वो बहुत अच्छे करे और तुम्हारे भी नसीब बहुत अच्छे करे। अनीसा जीती रहो, मुस्कुराती रहो, दिल खुश कर दिया भाई तुमने तो। और मुश कह रही है सॉन्ग की चाबी गुफरान अंकल के हाथ में है क्या? गुफरान अंकल नहीं है। मुश कैसी बातें कर रही हो, ना मैं अंकल हूं ना वो अंकल है। अपनी क्यू शीट नहीं बनाते आप? अपनी क्यू शीट नहीं बनाते? ये मैंने ही बनाई हुई है गलती से। अब मजा, ये मैसेज का मजा नहीं आया। पहले आर यानी पहले घंटे में अच्छे लगते, बारबेक्यू पार्टी चल रही थी। अरे हाँ, वो असल में होता है ना कि वो शुरू से ही थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था और वो होना भी चाहिए। और जो मकसद मेरा होता है कोई भी बात करने का तो उसको मैं हंसी मजाक में ही लेकर चल रहा होता हूँ, मगर उसके फैक्ट्स जो होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं। और इरफान भाई कह रहे हैं कि आंटी मिस यू, बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। और प्यारी सी आंटी आई लव यू, ये मैं अपनी तरफ से आई लव यू कह रहा हूँ, उनकी तरफ से सलाम कह रहा हूँ इरफान मेमन की जानिब से। और गाना उनको बहुत अच्छा लगा। और चाची अयूब लाला एफएम की, अरूसा सिस्टर, हलीमा पठान सिस्टर, सबको अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई आज आप फुल टाइम मूड में हैं, हैं जी ते हैं जी। हाय, फौरन से बेशतर गाने की जानिब जाएंगे और उसके बाद हम तानिया जी के मैसेजेस आपके सामने लाएंगे। तो ये ट्रैक जनाब अमीन की जानिब से उमेर रुबाब को हम डेडिकेट करते हैं। एलो फड़ो।

ना मेरा प्यार है अमर, ब्यूटीफुल ट्रैक और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी फरमाइश पूरी होगी। एक गाना मुझे बड़ा याद आ रहा है यार, अभी ये गाना सुना तो मुझे याद आ गया, उसके चंद बोल आपको सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद पसंद आए। लेकिन ये क्योंकि पंजाबी में, हमारे पाकिस्तान के एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन सिंगर शौकत अली साहब, पंजाब का एक बहुत अच्छा नाम, तो उनका एक ट्रैक मुझे अभी जहन में पता नहीं क्यों आ रहा है, तो उसके दो तीन बोल अपनी आवाज में सुनाता हूँ, पसंद आए तो बोल दीजिएगा ओके टेक। वो क्या था, क्यों

Welcome back, कहेंगे क्यों ये प्यास सी ना बुझे आंखों की। हाय हाय, अनीसा कह रही है कि आपका शो बहुत अच्छा है, कल का शो भी बहुत अच्छा था। और भाई दो सॉन्ग एक बात कहूं दिलदारा, इनको बहुत पसंद है, इनके दिल के बहुत करीब है। और भाई अयूब मेरा वालिद का नाम है। अरे अयूब साहब आपके वालिद का नाम है, अच्छी बात है, जी रहो। और जो मैंने बातें कही हैं उनको जहन में रखना अनीसा, यानी कि समझ रही है ना, इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा ही करता है। और जनाब अब आपसे इजाजत चाहनी है, इंशाल्लाह ताला मुलाकात जनाब आपसे होगी कल। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह मुलाकात होगी जनाब आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक काबिश बैंड का है, और ये हमारी बहन सुन तो नहीं रही, नौरीन तौसीफ को काबिश बैंड बहुत पसंद है मेरी तरह, तो अपनी बहन को हम ये डेडिकेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.